नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की

0: आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कभी कमजोर नहीं पड़ें, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आपके भीतर अनंत शक्ति है। आइए सुने भक्ति संगीत।

ये विविध भारती है, झरोखा मिली जी। सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 323। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम करेंगे संध्या 6:45 पर। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक। और 9:30 पर आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित है फिल्मकार देवानंद पर। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे पिटारा में गीतों भरी कहानी दो दीवाने शहर में, लेखिका नासिरा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 11 बजे मैटिनी शो, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अभिनेता स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दाहिया से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे, संपादन सहयोग काजल भद्रगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 12:05 पर यादों की महफिल, ये कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 1 बजे। दो बजे सुनिएगा त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार

में आप सुनेंगे 3 बजे कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिएगा नाटक बांदी, लेखक इस्मत चुगताई। शाम 4 बजे पिटारा लाएगा बॉम्बे टॉकीज गायिका पूर्णिमा यानी सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने और 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम प्रसारित होगा। शाम 7 बजे पार्श्व गायिका लता मंगेशकर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा ज्ञान विज्ञान का कार्यक्रम जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनो कहानी आप सुनेंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी का दूसरा भाग। 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए।

9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार और पार्श्व गायक हेमंत कुमार पर। दस बजे आप सुनेंगे छाया गीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोखा में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

शक्तिवान लगने से मूर्छित लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान लंका के वैद्य सुषेण को उनके घर समेत उठा लाए हैं। औषधि है संजीवनी बूटी। पर्वत का जहां वो मिलेगी नाम सुनकर पवन पुत्र हनुमान श्री राम का स्मरण कर प्रस्थान करते हैं। गुप्तचरों से ये संवाद सुनकर रावण चिंतित हो जाता है और कालनेमी नामक राक्षस को हनुमान के मार्ग में बाधा डालने के लिए भेजना चाहता है। कालनेमी पहले तो रावण को सद्बुद्धि देने का प्रयास करता है, मदांधता त्याग कर महामोह की निद्रा त्यागने की बात कहता है, किंतु फिर रावण के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के दूत द्वारा मरना श्रेयस्कर जान मुनि रूप धारण करके पवन पुत्र के मार्ग में माया रचना करता है। प्यास बुझाने के लिए हनुमान मुनि के संकेत पर सरोवर पहुंचते हैं, जहां मगरी के रूप में उपस्थित अप्सरा उनके पैर पकड़ लेती है। हनुमान उसका वध कर देते हैं। स्वर्गारोहण से पूर्व वो मुनि रूपी कालनेमी की वास्तविकता उन्हें बता देती है। कालनेमी का वध करके हनुमान पर्वत पर जड़ी न पहचान सकने की स्थिति में पूरा पर्वत ही उठाकर लंका जाते हुए अयोध्या के आकाश में पहुंचते हैं।

0: संगीत सरिता में आजकल जो श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है उसका शीर्षक है ख्याल और तराने की विशेषताएं। प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा दी गई जानकारी और उन्हीं के गायन के उदाहरणों पर ये श्रृंखला तैयार की गई है, लीजिए सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। अब मैं आपको उस्ताद आमिर खान साहब के द्वारा रचित राग दरबारी में तराना सुना रहा हूँ, जिसमें हज़रत अमीर खुसरो की रुबाई है। हज़रत अमीर खुसरो की जो रुबाई है वह ख़ास रुबाई इसमें प्रयुक्त की हुई है। उसकी मानी है, बलबम रसीद जानम तो बिया के जिंदा मानम पससा के मन न मानम बचकार खाही आमद। उसका मतलब है कि मेरे लबों तक जान पहुंच चुकी है, तू जल्दी आ ताकि मैं जिंदा रह जाऊं, और मेरे मर जाने के बाद आया उससे क्या फ़ायदा है, इसलिए यार मन भी आ। तो मैं आपको गाकर सुनाऊं।

0: राग मधुवंती में तराना अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। इनके साथ हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर ने संगत की और तबले पर इनका साथ दिया ओमकार गुलवाड़ी ने। ख्याल और तराने की विशेषताएं, शास्त्रीय संगीत की इन शैलियों पर आधारित कल की 12वीं और अंतिम कड़ी में आप सुनेंगे ख्याल नुमा ठुमरी की कुछ रचनाएं। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
3: ओ, ओ, ओ।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती, भूली बिस्तरी गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

हैं के जागे चकरा गए हम, सोए हैं के जागे चकरा गए हम। किसी की निगाहों से, किसी की निगाहों से टकरा गए हम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत।

0: नगमा निगार साहिल ध्यानवी, मौसिकार जयदेव, मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। फिल्म थी हम दोनों, और इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: देखो टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: पतिता, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के युगल स्वरों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: ओ मुझसे मत पूछो

हाउस नंबर 44 फिल्म में आपने सुना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला सचिन देव बर्मन ने। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में इसे गाया गीता दत्त और हेमंत कुमार ने। शैलेंद्र की रचना आपने सुनी फिल्म डिटेक्टिव से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: राजेंद्र कृष्ण की रचना, संगीत था सी रामचंद्र का। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का गाया फिल्म अनारकली का नगमा आपने सुना।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: चोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

फिल्म प्रेम पुजारी का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। नीरज की रचना सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। हम है राही प्यार की। ये कार्यक्रम आज बस यहीं तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय

0: मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुँचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है गृह मंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा समुद्र में हमले वैश्विक

0: को सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

मित्रों, जीवन में कई मोड़ आते हैं। खुशियों में हम खुश होते हैं, दर्द में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कभी तो ये राहें आसान लगती हैं, लेकिन कभी कभी ये राहें इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम अपना धैर्य खो देते हैं। कठिन समय शायद हमारी परीक्षाओं का समय होता है, जिनमें कभी तो हम धैर्य रखते हैं और कभी टूट भी जाते हैं। जिंदगी के ताने बाने में धैर्य या सहनशीलता को धारण करना आत्म संयम को बढ़ाता है। धैर्य मुश्किल हालात में हमारे लिए किसी ढाल की तरह होता है और हम मुश्किल वक्त से पार पाने में समर्थ हो जाते हैं। जिंदगी फिर किसी प्यार के नगमे की तरह लगने लगती है।

कारणवश हम विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कभी अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस करते हैं कि लगता है जिंदगी यहीं थम गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसमान के पंछियों की उड़ान जो नाजुक पंखों के भरोसे ही तय होती है, उन नदियों की धाराओं को देखिए जो रास्ते के पत्थरों को भी पार कर आगे निकल जाती है, वो माली जो फूलों और फलों के आने का इंतजार बड़ी धैर्यता पूर्वक करता है, चातक पक्षी स्वाति की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, धरती धैर्य धारण कर अच्छे ऋतु चक्र में फसलों से लहलहा जाती है, तो क्यों ना हम अपने मन को इन पलों में धीर धरना सिखाएं।

समय एक सा नहीं होता, बदलता रहता है। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह होती है। एक नया सवेरा जागता है। उम्मीद की नई किरणें हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देती हैं। हौसला जो हमने अपने दिल को बंधाया था, इस मुश्किल वक्त में संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा एक तरह से हमें दे जाता है। मुश्किल वक्त में न सिर्फ हम धैर्य रखें बल्कि औरों को भी धैर्य बंधाएं। मुश्किल घड़ियां जरूर गुजर जाएंगी और ये पल खुशियों में बदल जाएंगे।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा।

अशोक पंजाबी और चंदन बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना। अशोक पंजाबी की तरफ से सलोनी ठक्कर और नवराज हंस की आवाजों में ये गीत था वीरे दी वेडिंग फिल्म से।

आप सुन रहे थे रेड फिल्म का गीत, राहत फतेह अली खां की आवाज़ में, मनोज मुंतशिर के बोल थे, तनिष्क बागची की तर्ज थी। श्रोताओं, आज परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करता ये दिवस आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिन न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने के मकसद को बढ़ावा देता है। 2014 को पहली बार ये दिवस मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि परमाणु हथियार मानवता यानी पूरी धरती के लिए एक तरह से अत्यधिक विनाशकारी हैं और इससे उत्पन्न खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है, जिससे जन जन में परमाणु हथियारों से होने वाले विनाश के विषय में जन जागरण को बढ़ाया जा सके। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

रेखा भारद्वाज की आवाज में आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे की रचना शांतनु मोइत्रा की तर्ज थी। फिल्म थी लागा चुनरी में दाग। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा जगत के महान गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आज पुण्यतिथि है। 16 जून 1920 में हेमंत कुमार का जन्म बनारस में हुआ। हेमंत कुमार का मूल नाम हेमंत मुखोपाध्याय था, जो पेशेवर तौर पर हेमंत मुखर्जी और हेमंत कुमार के नाम से जाने गए। मुख्य रूप से बांग्ला और हिंदी भाषाओं में उन्होंने चर्चित गीतों को गाया और अनगिनत गीतों को संगीतबद्ध भी किया। वैसे अन्य भाषाओं में भी उनके गीत हैं। 1940 में प्लेबैक सिंगर के तौर पर बांग्ला फिल्म राजकुमारेर निर्वासन से डेब्यू किया उन्होंने। इस फिल्म में उन्होंने संगीतकार एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीतों को गाया। इसके बाद 1941 में निमाई संन्यास और फिर गायन के क्षेत्र में लगातार अपने सफर को जारी रखा। हिंदी सिनेमा में उनका पदार्पण 1942 में आई फिल्म मीनाक्षी से हुआ। 1944 में फिल्म इरादा और फिर सिलसिला आगे बढ़ता ही रहा। 1952 में आई फिल्म आनंदमठ, इसके बाद जाल, हाउस नंबर 44, 16वां साल, पोस्ट बॉक्स नंबर 999, एक ही रास्ता, 20 साल बाद, बिन बादल, बरसात। प्रदीप कुमार की फिल्मों की अगर बात करें तो नागिन और जासूस, इसके बाद कोहरा और अनुपमा जैसी सफल फिल्मों में गायन और संगीत निर्देशन भी हेमंत कुमार ने किया। एसडी बर्मन, सलील चौधरी के साथ उनकी अच्छी कोलैबोरेशन थी। बांग्ला संगीतकारों की अगर बात करें, निचिकेता घोष, रॉबिन चैटर्जी उनके साथ रहे। 1950 में हेमंत कुमार ने अपने स्वयं के बैनर हेमंत बेला प्रोडक्शंस के तहत फिल्म निर्माण में कदम रखा। इसकी पहली फिल्म मृणाल सेन द्वारा निर्देशित नील आकाशेर नीचे थी। बाद में इसका नाम बदलकर गीतांजलि प्रोडक्शंस कर दिया गया और 20 साल बाद कोहरा और खामोशी जैसी हिंदी फिल्में बनी। हेमंत कुमार रविंद्र संगीत के भी प्रमुख गायक और संगीत नाटकों की प्रमुख आवाज भी थे। हेमंत कुमार बेला मुखर्जी के साथ परिणय सूत्र में बंधे। उन्हें दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1947 की रिकॉर्डिंग गुएर बोधू ने उन्हें शोहरत दिलाई, जो उस समय आए अकाल और गांव की बदलती तस्वीर को बयां करती थी। हेमंत कुमार संगीत जगत की इस अमूल्य विरासत को छोड़कर 26 सितंबर

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आपने सुना, पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा के बोल थे।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज, दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
2: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से
6: आप डिजिटल

0: स्ट्रेस में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ज्योति नूरा को आप सुन रहे थे। राजशेखर का लिखा ये गीत था, कृष्णा सोलो की तर्ज थी, फिल्म थी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। श्रोताओ, जाने माने अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक देवानंद की आज जन्म जयंती है। भारतीय सिनेमा की परिकल्पना शायद देवानंद के बिना नहीं की जा सकती, जिन्होंने फिल्म दुनिया के शुरुआती दौर को एक नई पहचान दी और लगभग 6 दशकों से भी ज्यादा फिल्मों में सक्रिय रहे। उनकी स्क्रीन अपीयरेंस की बात करें, उनकी ड्रेसिंग सेंस की बात करें, स्टाइल की बात करें या फिर उनकी डायलॉग डिलीवरी, आज भी सभी के जहन में ये सब बातें ताज़ा हैं। 6 दशकों से ज़्यादा के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने बेशुमार फिल्में की। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया। 1946 में देवानंद ने प्रभात फिल्म्स की हम एक हैं में मुख्य भूमिका से फिल्मों में शुरुआत की। 1948 की फिल्म जिद्दी बेहद सफल हुई। फिल्म बाजी 1951 में आई और इसी फिल्म ने उन्हें एक व्यापक पहचान भी दिलाई। फिल्म जाल, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट, हम दोनों, सीआईडी, जब प्यार किसी से होता है, प्रेम पुजारी, हीरा पन्ना, गाइड और तमाम फिल्में जिनमें वैजयंतीमाला, साधना, नूतन, नलिनी जयवंत, वहीदा रहमान और कभी मुमताज भी साथ साथ नजर आई। फिल्म विद्या, जीत, शायर, अफसर, ये फिल्में अभिनेत्री सुरैया के साथ यादगार रहीं। अभिनेत्री कल्पना कार्तिक उनकी शरीके हयात बनी। दिसंबर 2011 को दिग्गज अभिनेता देवानंद ने इस असार संसार को अलविदा कहा।

0: आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, इस फिल्म का गीत आपने सुना देखा भरद्वाज की आवाज में, संजीव आनंद झा का लिखा और स्वरबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे।
1: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।
3: प्रिय

संजू फिल्म का ये गीत आपने सुना, सोनू निगम सुनिधि चौहान की आवाजें थी, पुनीत शर्मा का लिखा ये गीत था, रोहन की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: नगी, इस फिल्म में आपने सुना मंदाकिनी वुरा की आवाज, मंजर बलियावी के बोल थे, गोफी का संगीत था।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

तमाशा फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान का संगीत था। और इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न हो

लगता है आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो इसी उम्मीद के साथ लेते हैं कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रवींद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक ऐसे अभिनेता को नमन जिसने पश्चिम के मशहूर अभिनेता ग्रेगरी पैक की शैली को अपनाया, उसमें अपनी थोड़ी सी अदा मिलाई और बनाई अपनी एक सदाबहार अदा।
1: बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है।
0: एक ऐसा हीरो जिसने तकरीबन 4-5 दशक तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया।

कर्मदेव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को शंकरगढ़ गुरदासपुर में हुआ था। आज ये जगह पाकिस्तान का हिस्सा है। पिता पिशोरीलाल आनंद एक जाने माने वकील हुआ करते थे। तीन भाई थे, चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद। चेतन आनंद अपनी पढ़ाई खत्म करके मुंबई आ गए थे और

फिल्मों और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए थे। देव आनंद ने अपनी स्कूली पढ़ाई की डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल में। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो धर्मशाला गए और वहां से चले गए लाहौर, जहां उन्होंने इंग्लिश में बीए ऑनर्स किया। 40 के दशक में देवानंद मुंबई

0: यहाँ उन्हें काम मिला मिलिट्री सेंसर ऑफिस में। इसके बाद एक और छोटी सी नौकरी, लेकिन इस बीच अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्में देखने के बाद उनके मन में महत्वाकांक्षा पैदा हुई फिल्म कलाकार बनने की। एक दिन धड़ल्ले से वो प्रभात स्टूडियोज में घुस गए और काम की मांग की। आखिरकार सन 1946 में प्रभात फिल्म्स की पेशकश हम एक है में उन्हें काम मिल गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई। दोनों दोस्त बन गए। एक दूसरे से वादा किया जब वो कामयाब बन जाएंगे तो एक दूसरे के लिए फिल्में बनाएंगे। आगे चलकर दोनों ने ये वादा पूरा किया। देव आनंद ने अपने करियर के शुरुआती दौर में सुरैया के साथ कई नायिका केंद्रित फिल्में की। देव आनंद और सुरैया 7 फिल्मों में एक साथ नजर आए। सन 1948 विद्या, सन 1949 जीत, सन 1949 में ही आई शायर, 1950 में ही आई नीली और अफसर नाम की फिल्में। सन 1951 में आई सनम और फिर दो सितारे। दो सितारे सुरैया और देवानंद की एक साथ की गई आखिरी फिल्म थी। सन 1949 में देव आनंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स नामक फिल्म कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की पहली फिल्म थी अफसर। इसके बाद फिल्म बाजी बनाकर उन्होंने गुरुदत्त से किया वादा निभाया। इस फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे।
1: सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले भोर भूल भल सोना ना।
0: कलाकार थे देवानंद, गीता पाली और कल्पना कार्तिक। कल्पना कार्तिक के साथ देवानंद की बेहतरीन जोड़ी जमी। सन 1952 में आई आंधियां, फिर टैक्सी ड्राइवर।

0: और 9211।
1: आंखों में क्या जी
2: पहला बादल,
1: बादल में क्या जी
2: किसी का आंचल।
0: जब टैक्सी ड्राइवर हिट हो गई तो देवानंद और कल्पना कार्तिक ने सन 1954 में शादी कर

अपनी खास अदा के लिए देव आनंद जाने जाते हैं। कहते हैं कि जिस रास्ते से देव आनंद गुजर जाया करते थे, खास तौर पर अपनी ट्रेडमार्क काली पोशाक में, तो लड़कियां उफ उफ कर बैठती थी।

दिलचस्प बात यह है कि देव आनंद की फिल्मोग्राफी बेहतरीन गानों और शानदार संगीत की एक सुरीली यात्रा भी है। आइए फिल्म दर फिल्म देव आनंद की फिल्मों के गाने सुने और कुछ संवाद भी। सन 1955 मुनीम जी, निर्देशक सुबोध मुखर्जी।

0: में तड़पाने को।
1: सन 1956, चेतन आनंद के निर्देशन वाली फिल्म फंटूश, हीरोइन शीला रमानी।

आनंद के छोटे भाई विजय आनंद ने सन 1957 में बनाई 9-2-11 और इस तरह से उन्होंने निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस फिल्म की हीरोइन थी कल्पना कार्तिक।

0: के रूप में चली।
1: इसके बाद विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने कई फिल्मों में काम किया। सन 1960 काला बाजार, खोया

0: आएगी।
1: सन 1963 विजय आनंद का निर्देशन तेरे घर के सामने।
2: बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है।

0: सन 1965 देव आनंद और विजय आनंद की कल्ट फिल्म गाइड।
1: आज मैं कितनी आजादी महसूस कर रहा हूँ। जिस्म जैसे मांगे करना भूल गया, मन तड़पना तड़पाना भूल गया, जीवन आज जैसे मुट्ठी में है, मौत जैसे खेल है। अभी बेजान होकर गिर पड़ूंगा, तब देखोगे लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी। पर मजा देखो, आज कोई इच्छा ही नहीं रही, कम से कम जीने की इच्छा तो ना। जाने दो, जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है। तन रहे न रहे,

बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। मैं कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ, कभी गुस्से में बुरा भला क्या जाए करूँ तो बुरा मतलब। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है

0: देव आनंद और विजय आनंद की जोड़ी की बेमिसाल फिल्म साल 1967 ज्वेल थीफ।
1: क्या हुआ तुम्हें सारी रात तुम मेरे साथ रहे हो? मैं कहीं पी तो नहीं ली तुमने? रात को 9:30 बजे का शो हम दोनों ने साथ देखा, उसके बाद होटल में जाकर सो गए।
2: इसकी बात कर रहे हैं आप? पूना की गाड़ी के बाद आज पहली बार तो आपसे मिल रहा हूँ।
1: पीना है तुम्हें? हुआ क्या है, पुणे से कलकत्ता हम लोग साथ आए हैं, होटल में डबल रूम बुक किया, पल भर के लिए भी तो साथ नहीं छोड़ा हम दोनों ने।
2: सुबह कितने बजे तक मैं आपके साथ?
1: सो रहे थे बस मैं निकला है।
2: क्यों? साथ आपने दो दिन बिताए हैं, वो अमर है।
1: अमर?
2: अमर उसने फिर धोखा
1: दिया। पढ़ो
2: पढ़ो क्या लिखा है। अपने आप को जितना चालाक समझते हो उतने बेवकूफ। अमर
3: रात अकेली है।
0: 1970 में आई जॉनी मेरा नाम, निर्देशक थे विजय आनंद।
4: तुम्हारा क्या नाम?
5: जॉनी।
4: अरे तू इंसान है या हैवान?
5: हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा?
4: पहले जरा कानों की महल ने खिलवाई है। एक ही बात को बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ मैं।
5: एक बार और बता, फिर इसके बाद नहीं पूछेंगे।
4: जॉनी।
5: मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे आपने हमें 10,000 रुपए दिलवाए। अगर मालूम होता कि जिन भूतों से वास्ता पड़ेगा तो आप कभी झूठ से सिलवान करके न चक्कर हो जाते।
6: हर झगड़ा प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मुरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठ कर सब फैसले कर लिया जाए।
0: इसके बाद 1971 में तेरे मेरे सपने।
7: डॉक्टर जगन, क्या आप यही डॉक्टर जगन्नाथ कोठारी हैं? MBBS बॉम्बे, MRCOG लंदन, मेडिकल हूज हूँ। इसके साथ तुम क्या कर रहे हो?
8: इनके साथ मैं काम करता हूँ, उनके बारे में जान लेना पसंद करता हूँ।
7: उनके बारे में जान लेने से बेहतर है डॉक्टर आनंद उनको जान लेना। घबराओ नहीं, बहुत वक्त मिलेगा, जान जाएंगे हम एक दूसरे को।
8: मेरे लिए अभी ये जान लेना बहुत जरूरी है। ठंडे की बदबूदार बोतल देखता हूँ तो MRCOG लंदन समझ में नहीं आता।
7: आनंद मैं इसे बिल्कुल जरूरी नहीं समझता कि ये तुम्हारी समझ में आए। MRCOG सिर्फ 5 अक्षर हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और ये ठर्रे की बोतल एक हकीकत है मेरे लिए, समझे।
0: और सन 1973 में विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने की छुपा रुस्तम।

0: खटमल।
1: बात चल रही है देव आनंद की कुछ बेमिसाल फिल्मों की। सन 1958 में आई राज खोसला के निर्देशन वाली 16वां साल। हीरोइन थी वहीदा रहमान।

0: सन 1958 में मधुबाला और नलिनी जयवंत के अभिनय वाली काला पानी, निर्देशक राज खोसला।
1: देखा कि ये तुम्हें

नासिर हुसैन के निर्देशन वाली सन 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है, हीरोइन आशा पारेख।

युग बदलते चली गई, हीरोइने बदलती चली गई, लेकिन देव आनंद की शोखी, उनकी चंचलता और बॉक्स ऑफिस पर उनका जादू कायम रहा। सन 1961 में आई वॉर फिल्म हम दोनों, निर्देशक अमरजीत, हीरोइने नंदा और साधना।

0: अमरजीत ने सन 1965 में देवानंद और तीन हीरोइनों के साथ एक नायाब फिल्म बनाई, तीन देवियां। ये हीरोइनें थीं सिमी गरेवाल, नंदा और कल्पना मोहन।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन निर्देशन का देव आनंद का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा बनाई साल 1971 में।

0: फिल्मों का निर्देशन करते रहे। साल 2002 में देव आनंद को फिल्म संसार में अपने अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी ऊर्जा और जिंदगी के लिए उनका फलसफा नायाब था।
1: दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल।

3 दिसंबर 2011 लंदन की एक होटल में देव आनंद का निधन हो गया। सारी दुनिया सन्न

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

देव आनंद अपनी असीमित ऊर्जा, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने सदाबहार फिल्मी जीवन के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था देव आनंद पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार की

नमस्कार। गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है मेरी आवाज में लेखिका नासिरा शर्मा की कहानी दो दीवाने शहर में।

समुंदर पर बारिश हो रही थी, पानी पर पानी की टपकन, श्रुति की देह पर गिरती मूसलाधार बारिश मांसपेशियों में ऐसी तरंग उठा रही थी कि उस राग उस लय को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या पानी को भी ऐसी थिरकन और सिहरन महसूस हो रही है? उसे इस पल शुभम की याद शिद्दत से आ रही थी। उसने वायदा किया था कि इस बार जब बारिश का मौसम आएगा तो वह दोनों उसी तरह वीडियो बनाएंगे जिस तरह फिल्म मंजिल में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने भीगते हुए ये गाना बिना गाए ही महसूस किया था। पलकों पे बारिश, बूंदों के साथ उनके गालों पर बहे आंसू भी उसके दिल पर छाई घटा बन बरसने लगे थे। उसकी आंखों के पनीले पर्दे पर गानों के शब्दों के साथ शुभम के भीगे चेहरे और उसके हंसते चेहरे की छवि उभरने लगी।

0: यादों में खोई श्रुति जब भीगती हुई अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ी तो उसे अपनी तरफ ताज्जुब से भरी कई जोड़ी आंखें घूरती हुई नजर आईं। मुंबई की इस बारिश में जिस एहतियात को लेकर लोग यहाँ निकलते हैं वह तो उसने ली ही नहीं। न बदन पर रेनकोट, न हाथ में अम्ब्रेला, वह तो बस अपने में खोई हुई थी। साड़ी से टपकते पानी को देखते हुए उसे ख्याल आया कि वह सीढ़ियां तय करे या फिर लिफ्ट का बटन दबाए। उसे खड़ा देखकर गार्ड ने कहा,
1: मैम लिफ्ट से जाइए, पानी तो साफ हो जाएगा।
0: उसका फ्लैट भी तो 14वीं फ्लोर पर था। उसने धन्यवाद भरी नजरों से गार्ड को देखा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। फ्लैट लेते हुए उसे मैनेजर का कहा एक जुमला अक्सर याद आता है,
1: मैम आप दिल्ली से हैं, दिल्ली वाला कोई बात यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है ना?
0: शुभम ने फौरन कहा था, जी आप निश्चिंत रहें सर, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं मगर नौकरी के चलते कई शहरों से गुजरना पड़ता है, बस इसीलिए। दोनों को फ्लैट की सख्त जरूरत थी। ऐसी छोटी मोटी बातों को अगर दिल पर लगाकर आदमी हर एक को जवाब देने लगे तो सिवाय एनर्जी वेस्ट के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए श्रुति का चौकन्ना होना जरूरी था। अभी यहाँ आए 6 माह ही गुजरे थे कि शुभम को दुबई का ऑफर आ गया और सैलरी देखकर दोनों ने फैसला लिया कि शुभम को दुबई जाना चाहिए। यदि वहां का वातावरण भाया और श्रुति को भी जॉब करने का चांस मिला तो वो भी दुबई चली जाएगी, वरना शुभम 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके लौट आएगा। शुभम और श्रुति को लिविंग में रहते हुए 4 साल हुए थे। दोनों पढ़ने दिल्ली आए थे। कोचिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक फ्लैट किराए पर लेकर 2 स्टूडेंट्स रह रहे थे। उन्हें वो महंगा पड़ रहा था। शुभम को भी किसी परिवार के साथ उनके बाहर वाले कमरे में रहना पड़ता था जहां से कोचिंग सेंटर काफी दूर पड़ता था। खुद खाना पकाना भी पड़ता था और कभी कभी बाजार से भी खाना पड़ता था। घर से आए रुपए भी कम पड़ते थे। बहुत कुछ सोचकर वह उन लड़कों के साथ रहने लगा। खर्च में बचत के साथ आने जाने में जो समय लगता था उसे थकन भी होती और पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में था जहां कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। सड़क की तरफ खुलने वाली केवल इतनी जगह भर थी जहां एसी लगा था और उसे भी लेकर अक्सर वहां झिकझिक होती थी। छोटे शहर के आंगन दालान में रहने वाले ये तीनों लड़के ये सोचकर जी जान से मेहनत कर रहे थे कि इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाकी के दिन अच्छे गुजरेंगे, मगर नेट का पेपर आउट होने की खबर से सबके दिल टूट गए। थका हारा शुभम बोझिल मन लिए जब घर लौटा तो माँ बाप पहले ही खबर सुनकर टूट चुके थे, लेकिन ऊपर से हौसला बनाए हुए थे। जमीन बेचना नहीं चाहते थे मगर उन्हें लगा कि इस बार बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें बाप दादा की बनाई जायदाद से एक और टुकड़ा बेचना पड़ेगा। एक दो दिन शुभम उदास रहा, फिर उसने मन बना लिया कि वह खुद काम करेगा और नेट में बैठने का सारा खर्चा खुद अपनी कमाई से पूरा करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया और पिता ही एक मोटी रकम उसको हर माह भेजते रहे। इस बार शुभम का साथ अलग तरह का रहा। जो फ्लैट किराए पर ज्वाइंट मिला उसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। मकान मालकिन अकेली थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। उनमें कुंठा या कड़वाहट नहीं थी बल्कि वो ममता से भरी हुई थी। सभी को वह इतवार के दिन दोपहर के भोजन पर बुलाती थी और सबकी पसंद का खाना बनवाती थी। उन्हीं में श्रुति भी थी। श्रुति, हाँ श्रुति, बेहद हंसमुख और दिमाग की तेज लड़की। उसका शौक केवल पढ़ना था। दिल्ली में रहकर भी वह दिल्ली जैसी लड़कियों का फैशन नहीं कर पाती थी। वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी हट और विश्वास को देख पिता ने उसे पढ़ने की छूट दे रखी थी। श्रुति अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन हाँ शुभम के करीब आकर वो बहुत खुश भी थी।

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं, तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो, कुछ जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

0: शुभम ने कहा।
1: हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है। और श्रुति कहते कहते अचानक रुक गई।
0: शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है।
1: हाँ बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रही हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ। और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी।
0: शुभम ने कहा, ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं। पता है यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है, और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ।
1: हाँ यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ।
0: मुझ पर भरोसा रखो, यूं दिल छोटा नहीं करते, है ना।

0: फोन रखने के बाद उसे याद आया कि साथ फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा, इस बात को लेकर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति?
1: हाँ वो तो ठीक है, तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या?
0: श्रुति ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति।
1: ठीक है।
0: श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है, उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर जोर डालते रहते हैं बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है, बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, MI, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी।
1: माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो?
0: कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी, सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वह जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है, और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

दुबई की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी को समझाएगा, तब वो क्या करेगी। विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी। उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी। जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से उसकी परेशानी सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू।

नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयां हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम? श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे छोड़ शुभम को और आगे बढ़, देख रही है तीनों ऑफर कितने बढ़िया हैं, जो उसे दिल ना मिला और शुभम के लिए मन बेचैन रहा तो? एक जॉब से दूसरी जॉब हम छोड़ते पकड़ते हैं, रोज नए रेस्टोरेंट में लंच लेते हैं, फिर फिक्स लाइफ तुमने जी ली एक अच्छे इंसान के साथ इतने साल, तुम्हें क्या पता कि इनमें से जिससे शादी करो वो शुभम से भी बेहतर हो और शुभम को तुमसे बेहतर लड़की मिल जाए, क्या पता? रेखा की बात सुन श्रुति सन्नाटे में आ गई। उसने चकित हो रेखा को देखा और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो? रेखा हंसने लगी। जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो? अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो? अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं। हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा? इंसानी जिजीविषा? वही तो मैं कह रही हूँ, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा। ये सच कुछ लोगों का हो सकता है मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं। तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों? रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई। उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

पता नहीं नक्षत्रों का कमाल था या अपने अंदर उमड़ते प्रश्नों का हल ढूंढने का समय था। शुभम पर शादी का जोर बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में रचने और बसने के लायक है माँ। माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो साथ फेरे लिए जा सकते हैं जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी, खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे प्रश्न उसके प्रेम भरे संबोधन से पिघल जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से वह हिम्मत जमा कर रही थी कि माँ से बता दे कि उसकी पसंद का लड़का है और वह उसी से विवाह करेगी, वरना जीवन भर कुंवारी रहेगी। शाम को जब माँ का फोन आया कि वह दिवाली की छुट्टियों में आ जाती ताकि लड़के वाले उसे देख लेते और वह भी लड़के से मिल लेती, ये बात सुनकर अचानक श्रुति के मुंह से पहले का सोचा हुआ वाक्य निकल गया। माँ को सदमा सा लगा और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कड़वा कह दिया, जिसे सुनकर पहले श्रुति चुप रही, मगर जब माँ ने ये कहा, ये शादी नहीं हो सकती और तुम भी फौरन नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हें लेने भेज रही हूँ, तब श्रुति ने तेज आवाज में कहा, क्यों माँ, दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया है तो फिर मुझ पर प्रतिबंध क्यों लगा?

0: रही हो? बोलो माँ, शायद तुम भूल चुकी हो कि मुझको कानून ने इजाजत दे रखी है, मेरी उम्र को मत भूलना तुम। माँ ने फोन गुस्से से पटक दिया। श्रुति की सांसें तेजी से चलने लगी और वह बड़बड़ा उठी। बचपन से माँ मुझे कभी भाइयों को तो कभी पिता के आतंक से धमकाती रहती, पर अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब और कुछ नहीं।
1: उसने तूफान को पार कर लिया था, भावनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्रोध आंसुओं में ढल गया और ठीक उसी तरह वह सुबक सुबक कर रोने लगी जब माँ उस पर पहरे पिटाती थी।
0: अब और नहीं होगा माँ,
1: दो दिन तक उसने किसी को फोन नहीं किया। तीसरे दिन अचानक शुभम का मैसेज आया,
0: सरप्राइज, मेरी तरक्की के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं फैमिली साथ रख सकता हूँ श्रुति।
1: मैसेज पढ़कर श्रुति खुश हुई और जवाब लिखने ही जा रही थी कि उसके ईमेल और व्हाट्सएप पर हवाई टिकट की डिटेल भी आ गई। पढ़कर चकरा गई, समझ नहीं पाई, तभी फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर शुभम का हंसता हुआ चेहरा उभरा।
0: हाय, तैयार रहो, मैं लेने आ रहा हूँ। यहाँ 3 दिनों की छुट्टी है, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, छुट्टी ना मिले तो स्कूल से रिजाइन कर दो। हाँ, हमारा यहाँ फ्लैट बेहद खूबसूरत और आरामदायक है, ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे।
1: फोन बंद हो गया और श्रुति समझ नहीं पाई कि यह सब सुनकर कैसे रिएक्ट करे। उसने टिकटों की तारीख देखी, शुभम के आने की तारीख कल की थी और उन दोनों की उड़ान की परसों दोपहर की थी। श्रुति के बदन से तनाव अपनी जगह छोड़ रहा था और आराम उसकी मांसपेशियों को थपक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, वो भी अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मुश्किल के। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हुई।
2: दो दीवाने शहर में।

शुभम जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, आंखों में चमक थी। श्रुति को सीने से लगा हुआ बोला, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है श्रुति। हाँ, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना श्रुति? बाहर बादल घिरे हुए थे, मुंबई की बारिश का मौसम। उठो, चलो उठो, बाहर चलते हैं, शुभम ने कहा। अरे अभी बाहर? अरे अभी तो पैकिंग बाकी है, श्रुति ने कहा। चलो ना, चलो तो श्रुति। दोनों फुहारों में भीगते समंदर के किनारे पहुंचे। जी भर कर नहा लो, दुबई में बारिश नहीं होती है, शुभम ने कहा। और श्रुति के मन पर छाए बादल अचानक बरस पड़े और दोनों हंसने लगे।

गीतों भरी कहानी में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में। वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का। संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
3: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।

0: मैटिनी शो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय हमारे स्टूडियो में हैं उदय दहिया, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जाने माने कॉमेडी आर्टिस्ट हैं। उदय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत धन्यवाद यूनुस जी, और विविध भारती जो कि हमारे बचपन से हमने इसको सुना,
1: बिल्कुल

0: जब सुनते थे तो कभी सपने में सोचते थे कि क्या हमारी आवाज भी यहाँ पर सुनाई देगी,
1: और आज आ रही है,
0: और आज आ रही है, तो एक सपना साकार हो रहा है।
1: जब आपने बचपन का जिक्र किया तो चलिए फिर बचपन में चलते हैं
0: जी।
1: तो कहाँ आपका बचपन बीता था और कैसा था आपका बचपन?
0: बचपन बड़ा मजेदार था। कारण यह है कि पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे,
1: हाँ।
0: तो अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होते थे,
1: हाँ।
0: तो एक ही शहर नहीं, बहुत सारे शहर,
1: बहुत सारे शहरों वाला बचपन है
0: जी। जी
1: जैसे
0: जैसे मेरा जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में,
1: बताओ।
0: फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया भोपाल,
1: तो भोपाल आ गए,
0: फिर भोपाल से ट्रांसफर हो गया रायसेन,
1: लो।
0: तो ऐसे शहर बदलते रहे, ऐसे 5-7 शहरों में बदल के फिर हम लोग, अब नर्मदापुरम हो गया, पहले नाम होता था होशंगाबाद
1: जी।
0: तो उसमें एक कस्बा है, तहसील प्लेस है पिपरिया,
1: हाँ।
0: वहां मेरा ज्यादा लॉन्ग टाइम बीता है।
1: अच्छा, पिपरिया यानी पचमढ़ी जाने के रास्ते वाली
0: जी, बिल्कुल पचमढ़ी का मुख्य द्वार।
1: क्या बात है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बुंदेलखंड से ताल्लुक है आपका।
0: हाँ जी बिल्कुल है। क्योंकि बुंदेलखंड में मेरा ननिहाल है।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: कहाँ पर?
0: ये है सतना पन्ना।
1: पन्ना तो टाइगर रिजर्व के लिए
0: टाइगर रिजर्व है, जहां पर हीरे और पन्ने निकलते हैं।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि बचपन से जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो परफॉर्मेंस की दुनिया कहां से शुरू होती है?
0: ये शुरू होती है 1987 में, जब हमारे एक ऐसे कलाकार जो गायक भी, एक्टर भी, कॉमेडियन भी, राइटर भी, डायरेक्टर भी, तमाम खूबियां जिनके अंदर हैं,
1: किशोर कुमार
0: जी।
1: जी जी।
0: तो उस समय वो नहीं रहे थे 1987 में, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर लगातार उनकी फिल्में आती थी। और मैं उस समय कुछ 6वीं 7वीं पढ़ता था
1: जी।
0: तो उनको जब मैं देखता था तो मैं सोचता था यार ये कौन है, क्योंकि बचपन में इतना ज्यादा हम जानते
1: पता
0: नहीं थे,
1: नहीं होता,
0: बस इतना मालूम था कि कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं। और जब मैं उनको देखता, उनकी भाव भंगिमाएं जो एक जगह कभी टिकते नहीं थे, आप स्क्रीन पे उनको देखो तो पूरा बॉडी लैंग्वेज उनका हिलते ही रहता था, कभी एक भंग ऊपर जा रही है, तो मैं सोचता था ये क्या कर रहे हैं, ऐसा मैं भी कुछ करूंगा कि लोग हंसे और खुश हों, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए।
1: वाह वाह वाह।
0: तो वहां से मैं प्रेरित हुआ और फिर मैंने एक विधा सीखी। वैसे मैं चाहता था कि मैं जिंदगी में गायक बनूं।
1: अच्छा।
0: लेकिन इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हमको अलग से कोई तालीम दी जाए, सिखाया जाए, कहीं भेजा जाए। तो फिर मैंने सोचा एक ऐसी विधा जिसका कहीं कोई स्कूल नहीं होता, और वो है कॉमेडी।
1: बिल्कुल,
0: कॉमेडियन बनाने का कहीं कोई स्कूल नहीं होता।
1: सही है।
0: मतलब आपको एक्टिंग का स्कूल मिल जाएगा, सिंगिंग का मिल जाएगा, डांसिंग का मिल जाएगा, लेकिन कॉमेडी का स्कूल नहीं मिलता।
1: यस।
0: कॉमेडी खुद सीखी जाती है, ये एक लव की तरह सीखी जाती है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत सारे द्रोण आपके सामने होते हैं, अलग अलग सीनियर कलाकार, किसी का बोलने का ढंग सीखते हैं हम, किसी से बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, किसी से आवाज का थ्रो सीखते हैं। तो मैंने भी ऐसे फिर ये सीखना शुरू किया, और फिर धीमे धीमे करके मैं मंचों पे आने लगा।
1: क्या बात है।
0: और मैं सबसे पहले मैंने मिमिक्री सीखी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का पहला जो पायदान होता था वो मिमिक्री होता था, किसी की नकल कर लेना।
1: और जिन दिनों की आप बात करें उन दिनों तो स्टैंड अप कॉमेडी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था।
0: नहीं था, बिल्कुल
1: नहीं था। पर मिमिक्री बहुत होती थी, और मध्य प्रदेश में मिमिक्री के राजा कौन हुआ करते थे?
0: अरे नायकर साहब।
1: जबलपुर के नायकर साहब।
0: जी, जी जी। तो बस ऐसे बड़े सीनियर कलाकारों को हम मंचों पे सुनते थे, उनको सुनकर सीखते थे कि कैसे बोलना है, और फिर हमने कुछ अपना भी सीखा, अपना कुछ बनाया। जैसे मैंने कुछ अलग तरह की मिमिक्री सीखी। उस समय टेलीविजन पर महाभारत सीरियल आता था, तो उनके कुछ कलाकारों की आवाज की कॉपी करने लगा।
1: यहाँ से शुरुआत हुई, जैसे भीष्म पितामह।
0: भीष्म पितामह करता था मैं, दुर्योधन करता था मैं।
1: अच्छा, कड़क आवाज वाला जो।
0: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो। लोगों को लगता अरे महाभारत हमारे घर में आता और उसका कलाकार सामने खड़ा है। तो बहुत लोगों का प्यार मिला उससे मुझे।
1: कुछ करके बताएं।
0: जैसे मैं महाभारत का एक सीन आपको सुनाता हूँ, जिसमें दुर्योधन कुछ कह रहे हैं और बीच में फिर मुकेश खन्ना भीष्म पितामह को समझाएंगे, तो आप सुनिएगा।
1: जी जी जी।
2: आप चाहे कुछ भी कहें मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यदि उसने भरी सभा में कोई उल्टी सीधी बात कही तो उसी वक्त उसे बंदी बना लूंगा, समझे?
1: क्या बात है, बिल्कुल पुनीत इसर वाली आवाज है।
0: आप भीष्म पितामह समझा रहे,
1: वो कड़क आवाज,
0: वो समझा रहे हैं। कुछ कहने से पहले तनिक सोच तो लिया करो वत्स, कुछ सोच तो लिया करो। अरे धृतराष्ट्र, समझाओ अपने इस पुत्र दुर्योधन को। अरे कहने से पहले तनिक सोचता भी नहीं है, अरे इस तरह से तुम कहते रहे वत्स, तो बताओ क्या हमारी बूढ़ी छाती अर्जुन के वाणों को झेल सकेंगी वत्स।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से
1: वो जमाना याद आ गया जब
0: बचपना
1: कर्फ्यू लग जाता था।
0: जी जी,
1: रविवार को लोग महाभारत दिखा करते थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये स्कूल में आप करने लगे?
0: ये मैं स्कूल में करने लगा था।
1: फिर आगे
0: मैं धीरे से बढ़ा तो अपने शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से राजधानी भोपाल, फिर आसपास के और बड़े
1: लोग
0: शहर
1: बुलाने लगे
0: ऑर्केस्ट्रा में, नवरात्रि में, फिर ये सोशल वाले जो क्लब्स होते हैं, जो इस तरह के सोशल वाले प्रोग्राम कराते हैं,
1: हाँ।
0: उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया।
1: मतलब आप शुरू से ही बिजी हो गए।
0: जी बिल्कुल। मैं 10वीं क्लास में आते आते प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया था।
1: घर से डांट पड़ती थी?
0: हाँ, घर से डांट पड़ती थी, लेकिन
1: पढ़ लिख लो।
0: लेकिन वो डांट इसलिए नहीं पड़ती थी ज्यादा कि मैं स्कूल अटेंड करता था बराबर।
1: अच्छा।
0: और शाम को 5 बजे छुट्टी हुई स्कूल की, मैं घर आया, मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, सब अपने रंगीन कपड़े पहने प्रोग्राम वाले, और किसी ट्रेन में बैठकर आसपास के किसी शहर में
1: अरे
0: पहुंच जाता था, प्रोग्राम करता था, और रात की किसी ट्रेन से वापस आ जाता था।
1: अरे,
0: और सुबह बराबर स्कूल अटेंड करता था।
1: इतना डिसिप्लिन, इतनी मेहनत।
0: तो हमारे टीचर मन में सोचते थे क्या है, बोले ये लड़का कल भी स्कूल आया था, आज भी आया है, और आज इसका अखबार में फोटो छपाई, कल ये वहां प्रोग्राम कर रहा था,
1: ये कैसे हो गया,
0: ये कैसे संभव होता है। तो बड़े खुश होते थे इसको देखकर कि चलो कोई एक लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी फोटो आती है अखबारों में। तो प्रसन्न होते थे बहुत वो।
1: वाह वाह।
0: और मैं पढ़ने में तेज तो नहीं था, लेकिन एवरेज था, लेकिन ठीक था मैं। हाँ,
1: बढ़िया है। तो कॉमेडी का जो दौर नहीं था, मतलब मिमिक्री करनी होती थी और अलग अलग शहरों में जाके आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से आगे के रास्ते किस तरह से खुले?
0: देखिए, मैं अपने मध्य प्रदेश मैं सब जगह प्रोग्राम कर रहा था और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। तब तक करते करते अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके मैं कॉलेज में भी आ गया था, और कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, युवा उत्सव,
1: बिल्कुल,
0: उसमें हम प्ले में भाग लेते थे। कभी कहीं भाषण हो रहा है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये सब चलता था। उसमें मैं जीत कर एक शहर से दूसरे शहर, फिर कॉलेज के प्रोग्राम होते थे
1: राज्य स्तरीय,
0: हाँ, तो उन सब में मैं जाता था। फिर कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद मैं सोचा था अब कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा, तभी मेरे घर एक फोन आया।
1: अच्छा।
0: उस समय टेलीफोन होता था, मोबाइल आया नहीं था, आया होगा तो बड़े शहरों में आया था, हमारे यहाँ पहुंचा नहीं था। एक फोन आया, हम स्टार टीवी से बात कर रहे हैं,
1: अरे बाप,
0: एक कार्यक्रम बन रहा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसमें उदय दहिया साहब को हम बुलाना चाहते हैं।
1: उन तक आपका नाम पहुंच गया था?
0: हाँ, वो टीम जब मध्य प्रदेश आई तो उन्होंने पता किया, जो मैंने आपको बताया सोशल जो प्रोग्राम कराते हैं, इस तरह की समितियां कमेटियां होती हैं, तो उन्होंने बताया एक उदय दाहिया है,
1: वो अच्छा करते हैं,
0: वो बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया घर पे, मैं इत्तेफाक से घर में नहीं था, मेरी माँ ने, अम्मा जिनको बोलते हैं, उनने फोन उठाया, बोले बेटा वो तो भोपाल गए हैं शो करने, तो कल आएंगे। बोले ठीक है, कल हम बात करेंगे। अगले दिन उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम चल रहा है, मेरा नुकसान हो जाएगा, और इस प्रोग्राम में आके मैं करूंगा क्या? आप तो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, कॉमेडी में कोई कॉम्पिटिशन होता नहीं है। तो बोले आप कितने पैसे लेते हैं प्रोग्राम के? मैंने कहा मैं 5,000 रुपये बोलता हूँ, मुझे 3,000-4,000 रुपये मिल जाते हैं।
1: तो मेरा इतने ऑनेस्टली बता दिया।
0: हाँ, तो वो बोले कि एक काम करते हैं, हम आपको एक प्रोग्राम का पैसा देते हैं, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आप आइए। तो मैं फिर जबलपुर गया, ऑडिशन हुआ, और तुरंत उनने कहा कि आप मुंबई आ रहे हैं।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था,
1: क्योंकि उस वक्त लाफ्टर चैलेंज इतनी बड़ी चीज थी
0: जी,
1: कि उसमें जितने लोग शामिल हुए
0: जी,
1: सब जो हैं वो अलग अलग तरह से आज भी सक्रिय हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: और बहुत ज्यादा नाम उन लोगों ने कमाया।
0: सच्ची बात है, पूरी दुनिया में नाम हुआ उससे,
1: बिल्कुल। तो हाँ, जो लाफ्टर चैलेंज का जो पहला सीजन था
0: जी,
1: उसमें आप शामिल थे।
0: साहब, ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि जैसा मेरा नाम है उदय
1: जी,
0: जिसका मतलब ही होता है आरंभ होना,
1: और आरंभ से आप थे,
0: और मैं पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला कंटेस्टेंट था।
1: मतलब आप ही से शुरू हो रहा
0: है? मुझसे लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था।
1: अरे गजब। और कौन कौन लोग थे उस सीजन
0: उसमें? राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, एहसान कुरैशी थे,
1: हाँ।
0: और जो अभी सीएम साहब हैं पंजाब के, भगवंत मान साहब थे।
1: गजब गजब।
0: तो ये सारी
1: मजेदार कॉमेडी करते थे वो,
0: बहुत मजेदार कॉमेडी होती थी।
1: गजब। उसको तो लोग बहुत देखा करते थे और लोग इंतजार करते थे, कोई एपिसोड चूकता नहीं था।
0: सच्ची बात।
1: लेकिन मुकाबला कितना सख्त था, एक से बढ़के एक दिग्गज, सबकी अपनी अपनी शैली।
0: हाँ,
1: सुनील पाल की अपनी शैली, एहसान भाई की वो जो खींच कर बोलने की शैली
0: जी,
1: है ना, जो वो कहाँ के हैं एहसान भाई?
0: वो मध्य प्रदेश के हैं,
1: सिवनी के
0: हैं।
1: हाँ, तो वो अपने

0: शैली लेके आए।
1: जी हाँ,
0: आपकी अपनी शैली।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अपनी पहचान बनाने के लिए और इन दिग्गज लोगों से मुकाबला करने के लिए कितना जिगरा चाहिए था?
1: नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और हम कुछ मुकाबले के लिए या उसके लिए तैयार नहीं थे। हम तो ये था कि हमें जो आता है वो हमको करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब जो सुनने वाले हैं, जो निर्णय करने वाले हैं, वो देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो सब अपना अपना फन लेकर आए थे। और ना तो हम किसी सामने वाले को देखकर अपना कोई अस्त्र शस्त्र बदल सकते थे
0: जी,
1: क्योंकि था ही उतना।
0: बिल्कुल।
1: कोई एक्स्ट्रा कुछ था नहीं कि यार इन्होंने ये सुनाया तो अब मैं ये सुना दूंगा। हमारे पास अपना था, हमको ये सुनाना है।
0: क्या बात है।
1: अब ये अच्छी बात है कि जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, जज हैं, उनको पसंद आ गया।
0: लेकिन एक मजेदार बात मुझे समझ आ रही है कि ये लाफ्टर चैलेंज सीजन 1 एपिसोड 1 आप परफॉर्म कर रहे हो, कितना दबाव था और क्या परफॉर्म किया था आपने
1: वहां पर? ऐसा था कि कुछ फिक्स तो था नहीं। उन्होंने कहा कि आप क्या क्या सुनाते हैं सुनाइए। तो हमने अपना सुनाया, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने उसमें किया कि ये रख लीजिए आप।
0: वाह।
1: और ये आपको एक एपिसोड में 4 अलग अलग दौर होंगे, पहला, हाँ, दूसरा, तीसरा। तो पहले दौर में ये सुनाइए, दूसरे दौर में ये सुनाइए, फाइनल में ये सुनाइए।
0: करेक्ट है।
1: तो पहले दौर में उन्होंने जो था हमारा ही माल पूरा, बस उन्होंने सिलेक्ट किया कि ये सुनाइए। और वो हमने सुनाया और वो पसंद आया लोगों को।
0: क्या था वो?
1: वो उस समय वो बात हो गई 20 वर्ष पुरानी, 2005 में आया था ये। तो पहले एपिसोड में मैंने जो सुनाया था वो कुछ लोगों की फिजिकल बॉडी के ऊपर था वो। कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, दुबले पतले मोटे अलग अलग तरह के लोग। तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनको फायदे होते हैं। तो एक बहुत मोटा आदमी जूते की दुकान में गया और जूते वाला उसके सामने जूते रखते जा रहा, उसको क्या पेट इतना बड़ा था कि नीचे पैर दिखते नहीं थे उसको। तो वो ऐसे पैर करता था और बोलता था ये बन नहीं रहे, ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं बन रहे। दुकान वाला परेशान, पसीना पोछड़ा, जूते का ढेर लगा हुआ है। बोल रहा कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। अचानक वो बोला यार ये एकदम सही है, ये एकदम फिक्स सारा, ये कितने का है? दुकान वाला बोला ध्यान से नीचे देख, वो जूता नहीं है, जूता रखने का डब्बा है जिसमें पैर फंसा लिया।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो इस तरह का मैंने कुछ सुनाया था कि मैं एक कार्यक्रम से आ रहा था,
0: हाँ,
1: ट्रेन से आ रहा था, मेरी स्टेशन आने के 4 स्टेशन पहले एक बहुत मोटी सी बहन जी मेरे पास आ गई और बोली भाई साहब मुझे अगले स्टेशन पे उतार दोगे? तो मैंने कहा क्यों बहन जी, आपसे क्या उतरते नहीं बनता? बोले ये बात नहीं है भाई साहब, दरअसल मैं बहुत मोटी हूं तो मुझे सामने नीचे का दिखता ही नहीं है। तो मैं सीधे उतर नहीं पाती हूं, तो मैं ऐसे घूम के उतरती हूं तो लोग समझते मैं चढ़ रही हूं, धक्का देके ऊपर कर देते हैं। मैं 4 स्टेशन से ट्राई कर रही हूं उतरने का, अभी तक नहीं उतर पाई।
0: कहां से सोचते हैं आप?
1: तो इस तरह का कुछ मैंने सुनाया था वहां पर।
0: अच्छा। लेकिन लगातार जब मामला आगे बढ़ता चला गया तो जाहिर है कि मुकाबला भी सख्त हुआ और जो अपने कमान के तीर हैं वो तो खर्च होते जा रहे थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो फिर कैसे सस्टेन किया?
1: देखिए एक फसल कटती है तो दूसरी
0: तो आ जाती है।
1: तो वही चल रहा था कि जो पुराना था वो भेज दिया, अब कुछ नया बनाइए।
0: हाँ।
1: और जो नया बनाते हैं, नया क्रिएशन करते हैं, वही मार्केट में चल पाते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: एक निश्चित मात्रा में कोई लेकर अगर चल रहा है तो वो तो एक दिन खर्च हो जाएगा, फिर वो आदमी क्या करेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो हम हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते हैं।
0: देखिए इतने साल हो गए, कितना आपने गिना? 20 साल,
1: 20 वर्ष हो गए।
0: 20 वर्ष में तो कितनी फसल उगा देनी पड़ी होगी?
1: बहुत सारी। अब आपने याद दिलाया तो मैं याद कर रहा हूँ 20 साल पहले क्या सुनाया था। ये हम स्टेज पर सुनाते ही नहीं है आजकल, कुछ और ही सुनाते हैं, कुछ और चलते रहता है
0: क्योंकि सब बदल गया है,
1: सब जमाना बदल रहा है पूरा।
0: उस वक्त जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ किस तरह के रिश्ते थे, क्योंकि मुकाबला भी तो हो रहा था?
1: जी बिल्कुल, कलाकारों का आपस में कोई मुकाबला नहीं था। सब आपस में एंजॉय करते थे।
0: तो बैक स्टेज क्या चलता रहता था? इतने सारे कॉमेडियन एक साथ अलग अलग इलाकों के जुड़ रहे हैं,
1: बहुत मजे करते थे। मतलब जो वहां नहीं होता था,
0: हाँ,
1: उसकी बातें चलती थी।
0: अच्छा।
1: और उसको लेकर कॉमेडी की जाती थी, और चूंकि मिमिक्री आर्टिस्ट थे तो साथ वालों की, कलाकारों की मिमिक्री की जाती थी।
0: हाँ।
1: तो बहुत मजेदार होता था।
0: एक दूसरे की भी करते थे?
1: एक दूसरे की
0: जैसे
1: करते थे। वो बुरा मानेंगे अगर सुनेंगे तो, हमारे आप नायकर साहब को सुनते हैं?
0: अरे नायकर साहब हमारे शहर के हैं।
1: तो वो जब बात करते थे बोलते थे
2: अरे दहिया ये देखो भैया हमारा तो ऐसा है कि हम जो हैं तो कभी ये भीड़ भाड़ के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, हम अपना जबलपुर में रहते हैं, वहीं से प्रोग्राम करते हैं, बम्बई आते हैं, अपना प्रोग्राम किए और भैया चले गए जबलपुर, ये भीड़ भाड़ का चक्कर अपने को नहीं जमता।
0: बिल्कुल यही स्टाइल है उनकी, और वो जो चेहरे के निष्प्रिय भाव
1: जी जी तो ऐसे हम लोग एक दूसरे का भी करते थे।
0: अरे वाह क्या बात है। एक कॉमेडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैनी नजर रखना और दुनिया की धड़कनों को पहचानते रहना। इन दिनों आप कौन कौन से आइटम्स कर रहे हैं और उनमें से कुछ हमारे लिए पेश कीजिए।
1: जरूर, इस समय मैंने जो अपना एक कार्यक्रम बनाया है जो खास तौर से बहुत पसंद भी किया जा रहा है, मैं स्कूल में जो बच्चे हैं और जो परीक्षा को लेकर उनके मन में एक डर होता है और कम परसेंट ना जाएं, बहुत दबाव होता है बच्चों
0: बहुत ज्यादा
1: और कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उनको लेकर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। वो मुझे उसमें स्कूल वाले और कॉलेज वाले अपने स्कूलों में बुलाते हैं और मैं अपनी बातों से बच्चों को हंसाते हुए हल्का फुल्का मनोरंजन करते हुए उनको उस फियर से बाहर करता हूँ।
0: अरे गजब।
1: और उनको ये समझाता हूँ कि जिंदगी में पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन सबसे जरूरी कोई अगर चीज है तो वो है आपकी जिंदगी।
0: वाह वाह वाह,
1: आपका जो जीवन है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
0: कितनी प्यारी बात है।
1: तो ये कॉन्सेप्ट लेकर मैं चल रहा हूँ और इसको लेकर मैं बच्चों के बीच में कॉमेडी भी करता हूँ, उनके स्कूल की बातें करता हूँ, फिर अपने स्कूल की बातें उनको बताता हूँ, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे टीचर क्या करते थे, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके टीचर आपको क्या दे रहे हैं और आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और ये सब बताते हुए मैं उनको बताता हूँ, तो वो बच्चों को बड़ा मोटिवेट होते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बातें सुनकर बच्चे थोड़ा भी सीख जाएं या एक दो बच्चे भी सुधर जाएं, वो ना करें जो वो कर लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मिशन में सफल हो गया हूं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। लाफ्टर चैलेंज में शामिल होने के बाद जाहिर है कि अपना शहर छूट गया
1: जी,
0: है ना, और आप मुंबई के हो गए
1: जी।
0: जिंदगी कितनी बदल गई?
1: जिंदगी बदली तो है लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है, जो बदलता है वही सर्वाइव करता है, आगे जाता है। थमा हुआ पानी तो एक दिन दुर्गंध मारने लगता, जो बहता है वो साफ निर्मल होता जाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां रही होंगी, वो पीछे छूटती जा रही हैं और अच्छा साफ होके उजले होते आगे बढ़ते जा रहे हैं।
0: क्या बात है। एक के बाद एक लगातार आपने बहुत सारे टेलीविजन पर काम किए और उसके जरिए आपकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती चली गई। सबसे ज्यादा एंजॉय किस प्रोग्राम में किया आपने?
1: देखिए काम तो बहुत सारा किया लेकिन जो शुरुआत कहते हैं ना, जब शुरू होता है वो आनंद एक अलग ही होता है। वो जो लाफ्टर चैलेंज किया था हम लोग, उसके बाद तो फिर क्या, वो पहली बार था, पहली बार हवाई जहाज में बैठना, पहली बार फाइव स्टार होटल में बैठना, पहली बार कैमरे के सामने किसी बड़े मंच पर सामने सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो जो अनुभव था वो अद्भुत था। उसके बाद तो फिर वो एक आदत में आ गया कि भाई अब कोई और दूसरा सेलिब्रिटी आएगा, अब कोई दूसरा मंच होगा, लेकिन जो पहला मंच था उसका अपना एक अलग मजा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी किस तरह की रिएक्शंस होती हैं आपके करियर को लेके? और क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी एक चिंता आपके करियर को लेकर रही
1: जी
0: होगी।
1: पहले तो ऐसा था कि पहले उनको स्टार्टिंग में डर लगता था कि ये क्या कर रहा है, हमारे पूरे खानदान में आसपास दूर दूर तक कोई कलाकार नहीं,
0: परफॉर्मर नहीं था,
1: और अगर वहाँ छोटी जगह में जो कलाकार होते भी हैं तो पार्ट टाइम में कलाकारी करते हैं, बाकी या तो कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या कोई दुकानदारी कर रहे होते हैं। क्योंकि कलाकारी करके कोई अपना घर चला लेगा, जीवन चला लेगा, ये वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। तो यही कहते थे कि बेटा ये क्या चल रहा है तुम्हारा तो हम बोलते थे कि अभी स्कूल चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आगे चल के नौकरी करेंगे, काम करेंगे, ये शौक है हमारा। लेकिन जब उससे पैसे मिलने लगे, अखबारों में फोटो छपने लगी और पैसे आने लगे तो उनको लगा कुछ तो अच्छा कर रहा है।
0: जब टेलीविजन पर आपको देखा मम्मी पापा ने
1: जी,
0: तो वो कैसा मोमेंट था?
1: वो तो अद्भुत था। वो बड़ी मजेदार घटना है, मेरे पिताजी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, बिजली विभाग में लाइनमैन की पोस्ट पर थे वो
0: जी जी,
1: तो बड़े अधिकारी ऊपर होते हैं साहब बड़े बड़े, और काम बताते हैं, मिस्टर दाहिया यहाँ, मिस्टर दाहिया वहां जाओ, मिस्टर दाहिया। बाबूजी बोले एक दिन मेरे कान में आवाज आई, दाहिया साहब। तो बोले यार साहब मुझे दाहिया साहब क्यों बोल रहे हैं? बोले जी सर, दाहिया साहब ये उदय दाहिया कौन है? तो बोले साहब मेरा लड़का है दूसरे नंबर का। अरे बोले उनको कभी आते हैं यहाँ? बोले हाँ आते हैं। बोले आए तो एक बार घर भेज देना, हमारे बच्चे मिलना चाहते हैं।
0: अरे गजब गजब।
1: तो वो मोमेंट इतना अच्छा था कि पिताजी ने बताया, बोले बेटा तुम्हारे कारण आज मेरे साहब ने मुझे साहब कहा।
0: कितनी प्यारी बात है, मतलब उन्हें कितना अच्छा लगा होगा,
1: बहुत अच्छा लगा
0: कि बेटे ने कोई

0: तो उपलब्धि हासिल की है।
1: जी जी।
0: अब तो ये ट्रैवल करना, परफॉर्म करना एक रूटीन बन गया है। लेकिन अपने काम में नवीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप?
1: मैं देखो आपको बताऊं, मैं एक तो पढ़ने का बड़ा शौकीन हूं।
0: हाँ हाँ।
1: और मैं चूंकि एक हास्य अभिनेता हूं,
0: हाँ,
1: तो मैं व्यंग बहुत पढ़ता हूँ। मैंने परसाई जी को खूब पढ़ा हुआ है।
0: क्या बात है।
1: उनका पूरा जितना भी साहित्य है 6 खंड में वो मेरे पास है।
0: हाँ।
1: शरद जोशी जी हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यंगकार हैं उनकी किताबें मेरे पास हैं, उनको सबको मैं पढ़ता हूँ। और एक बड़ी अच्छी चीज ईश्वर ने मुझे दी है कि मैं जो पढ़ता हूँ या जो देखता हूँ वो मुझे याद हो जाता है और बरसों बरस तक याद रहता है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो मैं जो भी पढ़ता हूँ वो याद रहता है और कभी कभी मौका आने पर मैं उनको मंच पे सुना भी देता हूँ,
0: बहुत
1: जैसा मौका आ जाए।
0: क्या बात है।
1: तो वो बाद में नाम भी बोलता हूँ उनका कि इनकी रचना है ये।
0: हाँ हाँ।
1: क्योंकि वो उनका अधिकार है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ।
0: जरूर।
1: ये परसाई जी की, मैं उनकी रचना है घंटों सुना सकता हूँ, इतनी याद है मुझे।
0: वाह वाह।
1: एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ।
0: जरूर।
1: लोग कुत्ते पालने के बड़े शौकीन होते हैं और आजकल बड़ा मीडिया में छाया भी है। हमारे यहाँ से कोर्ट से भी निर्देश होते हैं, डॉग के ऊपर बड़े केसेस होते रहते हैं। लोग कुत्ते पालते हैं, अलग अलग तरह के कुत्ते पालते, क्या शौकीन लोग होते हैं। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहां से निकला, दूसरा आदमी कॉलोनी के उस तरफ से निकला। ये दोनों आमने सामने से निकल रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, अचानक इस आदमी के कुत्ते ने उस आदमी के कुत्ते को भौंक दिया।
0: याद आ गई मुझे ये रचना।
1: तो वो साहब बोले, बताओ कैसा कुत्ता है? मैनर्सलेस कुत्ता है। मैनर्स ही नहीं है, बताओ भौंक रहा है, भौंका जाता है क्या? तो ये साहब बोले, मैनर्सलेस किसको बोला? हाँ, मेरा कुत्ता बहुत अच्छी नस्ल का है, एक नंबर का कुत्ता है। और ये जो तुम बोल रहे हो ना नस्ली कुत्ता, तुम्हारा होगा ऐसा रोड छाप। हमारा नस्ली कुत्ता? बोले, रोड छाप हमारा नहीं है, रोड छाप आपका कुत्ता है। अगर हमारा कुत्ता रोड छाप होता तो भौंकता, आपका कुत्ता भौंका है, आपका कुत्ता रोड छाप है। बोले, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे से, आपका कुत्ता भी रोड छाप है और आप भी रोड छाप हो, पिछले साल ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़े गए थे। हाँ, तो बोले, आपको भी मैं जानता हूँ, उसके एक साल पहले आप भी थाने गए थे। किसी ने पूछा क्या हो गया? बोले, कुछ नहीं, कुत्तों की लड़ाई हो रही।
0: क्या बात है। परसाई जी की जो निगाह है वो बहुत तेज, और वो जो समाज पर जो चिकोटी काटते हैं वो बहुत तेज होती है।
1: जी,
0: बहुत तीखी होती है।
1: जी,
0: तो देखिए कितने सुंदर तरीके से आपने पेश किया। इतनी सारी बातें हो रही हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म कर दें आप हमारे लिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे।
1: जी जरूर जरूर। मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूँ जिसको सुनाकर स्टार टीवी पे मेरा चयन हुआ था।
0: अच्छा।
1: इसको सुनने के बाद उस टीम ने कहा था कि एक ऐसी कॉमेडी है जिसे बोलकर सुनाना बहुत कठिन है, इसको पिक्चराइज तो किया जा सकता है लेकिन कोई बोल के बताए और वो पिक्चर सामने बन जाए, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं।
0: ओके।
1: तो ये कहानी है कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है, तो इसलिए दिया है ताकि वो किसी काम को करे तो वो काम को अच्छे से कर ले, मुसीबत में ना फंसे और थोड़ा जल्दी कर ले दिमाग लगा के। लेकिन इंसान की आदत है कि उसके पास दिमाग है तो ज्यादा चलाता है उसको, और जब ज्यादा दिमाग चलाता है तो किस मुसीबत में फंसता है वो। तो एक आदमी को डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने देखा उस आदमी का सर फूटा है, दांत टूटे हैं, पसलियां टूटी हैं, हाथ टूटे, कमर टूटी, पैर भी टूटे हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, यार एक चीज बताओ, आदमी का एक्सीडेंट होता है तो एक दो जगह से टूटता है, तुम ये ऊपर से नीचे तक कैसे टूट गए? तो उसने क्या बताया? बोले, डॉक्टर साहब ये सब होशियारी के चक्कर में हुआ है। बोले, कैसे? बोले, डॉक्टर साहब क्या हुआ कि एक 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चल रहा था, शाम के टाइम ठेकेदार आया और बोला, ये जितनी ईंट रखी हैं ये पूरी ले जाकर नीचे रख के आओ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो मैंने मन में सोचा कि अगर एक एक दो दो करके ये नीचे ले जाऊंगा ईंटों को तो मेरा तो सवेरा यहीं हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मैं होशियार आदमी हूं, मैंने दिमाग लगाया, वहां एक ऐसी गर्री लगी थी ऊपर, उस पे मैं ऐसे सामान खींच खींच के ऊपर लाते थे हम, तो मैंने एक अच्छी लंबी रस्सी उठाई और वो घिर्री में यूं फंसाया तो उसके दोनों छोर चले गए नीचे। अब डॉक्टर साहब, मैं नीचे उतर के आया, मैंने उसके एक छोर पे खाली ड्रम बांध दिया, खाली ड्रम 15 किलो का और मेरा वजन 50 किलो का, और मैंने दूसरे छोर को खींच खींच के ड्रम पहुंचा दिया ऊपर। अब दूसरे छोर को मैंने खंबे से बांध दिया। अब मैं ऊपर चढ़ के आया डॉक्टर साहब, और मैंने सारी ईंट उठा के वो ड्रम में डाल दी। अब ड्रम हो गया 400 किलो का और मेरा वजन तो 50 मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं नीचे उतर के आया डॉक्टर साहब, और मैंने मन में सोचा कि खंबे से रस्सी खोल के और धीरे धीरे छोड़ता जाऊं।

0: तो ड्रम नीचे आता जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये भूल गया कि ड्रम 400 किलो का और मैं 50 किलो का हूं। तो जैसे ही मैंने खंबे से रस्सी खोली डॉक्टर साहब, सट से मेरे दोनों पैर जमीन से उठे, मैं सरसराता ऊपर जा रहा, ड्रम सरसराता नीचे आ रहा, सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, अपन बहुत होशियार आदमी है। 5वीं मंजिल पे आ गए, यहां से अगर रस्सी छोड़ेंगे तो खोपड़ी फूट चुकी, नीचे गिरेंगे, हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो मैं रस्सी जोर से पकड़ा रहा डॉक्टर साहब। अब मैं सरसराता ऊपर जाऊं, ड्रम सरसराता नीचे जाए, सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे दोनों हाथ वो गर्री में चले गए, तो दोनों हाथ टूट गए।
1: लो भैया,
0: मैंने कहा खोपड़ी पहले ही फूट चुकी, हाथ इसमें टूट गए, अगर यहां से रस्सी छोड़ दी तो नीचे गिरूंगा तो साफ ही हो जाऊंगा। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ रहा डॉक्टर साहब। अब हुआ क्या कि जैसे ही ड्रम जमीन पर गिरा तो वो वजन के कारण फट गया, और जैसे ही फटा तो उसकी ईंट गिर के हो गई खाली, तो वो हो गया 15 किलो का और मैं 50 किलो। अब डॉक्टर साहब मैं ऊपर से सरसराता नीचे आऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, हाँ। सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा, हाँ। तो खाली ड्रम आके मेरे पैर में लगा तो दोनों पैर टूट गए। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, नहीं तो अपने हाथ पैर सब टूट गए, यहां से नीचे गिरे तो साफ ही हो जाएंगे। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ा रहा डॉक्टर साहब। अब मैं सरसराता नीचे जाऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और मैं जैसे ही नीचे पहुंचा तो वो ईंट के ढेर में गिरा। तो मेरी कमर टूट गई डॉक्टर साहब। और जैसे ही कमर टूटी तो मुझे चक्कर आ गया, और जैसे ही चक्कर आया तो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, और जैसे ही रस्सी छूटी तो 15 किलो का ड्रम 10वीं मंजिल से सरसराते आया और आकर मेरे ऊपर गिरा, पसलियां टूट गई, दांत टूट गए। अपन बहुत होशियार आदमी।
1: क्या बात है, ये तो विडंबनाओं का जो आपने दृश्य खींचा है वो बहुत ही कमाल है।
0: जी जी,
1: तो इस तरह से आप जो है कहानियां सुनाते हैं, अपने जीवन की सबसे यादगार घटना, सबसे यादगार शो हमें बताएं।
0: शो तो यादगार बहुत सारे हुए हैं, कई जगह गए हैं, अलग अलग तरह के मंच मिलते हैं। कभी कोई आध्यात्म का मंच होता है, कभी कोई राजनीतिक मंच होता है, कभी कोई फिल्मी सितारों का मंच होता है। तो हम जहाँ जाते हैं लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि वहाँ से रिलेटेड कोई बात करें। तो एक बार मैं प्रोग्राम करने गया था ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, तो दादी ने मुझे बुलवाया और कहा, उस समय तक कुछ वैसे कॉमेडियन आ गए थे जो आजकल बहुत छाए हुए हैं, जो थोड़े से बिलो द बेल्ट बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये आध्यात्म का मंच है और आप लोग कॉमेडी वाले हैं, तो थोड़ा सा मंच की गरिमा बनाए रखिए। तो मैंने कहा जी दादी। अगले दिन जब मैं मंच पे आया तो मैंने प्रोग्राम किया ही नहीं, मैंने पहले एक छोटा सा प्रवचन सुनाया।
1: अरे गजब।
0: 1-1.5 मिनट की बात थी। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जो करता है करने देना, ये बहुत अच्छा करने वाला है।
1: वाह वाह वाह।
0: वो चूंकि शिव बाबा को मानते हैं, तो मैंने जाके शुरू ही ऐसे किया कि शिव बाबा ने ही सब कुछ बनाया है, जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, सारे रस बाबा ने ही बनाए हैं। और जब जब शिव बाबा ने कोई रस बनाया तो उसके साथ एक कैरेक्टर बनाया। जब श्रृंगार रस बनाया तो रति और कामदेव को बनाया। जब वो हमारे हृदय में आघात करते हैं तो प्रेम जागता है। ऐसे अलग अलग रस बनते गए, एक एक कैरेक्टर आते गए। फिर उन्होंने हास्य रस बनाया, तो हास्य रस के साथ उन्होंने भगवान श्री गणेश की रचना की। उदाहरण के तौर पर हम जब आरती गाते हैं तो गणेश जी की आरती में एक लाइन आती है, पग खंबासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे।
1: वाह।
0: जब चंद्रदेव ने पहली बार गणपति जी को देखा तो उनका बड़ा सा पेट, खंबे जैसे बड़े बड़े कान, तो उनको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, थोड़ा सा हंस दिए। लेकिन अगली लाइन में कहा है, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। गणेश जी को गुस्सा आ गया कि मुझे देख के कोई हंसेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारी कलाओं से विमुक्त करता हूं। तब ये बात आई कि देवता हास्य के लिए नहीं होते, देवता पूजनीय होते हैं।
1: वाह वाह।
0: उस दिन के बाद गणेश जी को देखकर कोई नहीं हंसा, वो प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन भगवान शंकर जी ने ये रस तो बना ही दिया था, तो इसको बिखेरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तब भगवान श्री गणेश ने हम जैसे गणों की उत्पत्ति की और अब हमारी रचना करके हमको आदेश दिया कि जाओ और इस संसार में मेरे बनाए हुए हास्य रस को बिखेर दो।
1: वाह।
0: तो उनके आदेश से मैं मंच पे आपके सामने खड़ा हूं और अब मैं यहां से उनके हास्य रस को बिखेरूंगा।
1: क्या बात है।
0: तो ये बात जब मैंने वहां कही तो

0: बड़े खुश हो गए वो, वो दादी माँ, और बोली ये लड़का जो है ये जो कॉमेडी सुनाता है इसको सुना नहीं देना।
1: वाह वाह वाह वाह, मतलब प्रॉपर मंच की गरिमा का
0: जी,
1: आपने पालन किया।
0: जी बिल्कुल।
1: उदय जी, इतनी सुंदर बात आपने कही कि कॉमेडी के मंच पर गरिमा कायम रखनी कितनी जरूरी है। ब्रह्म कुमारी जब आप गए और वहां परफॉर्म किया, आज जो कॉमेडी मंचों की हालत है, और दोनों तरह की कॉमेडी हो रही है, एक वो जो बहुत शालीन है और एक वो जिसमें शालीनता के तत्व कम है, तो क्या राय है आपकी?
0: देखिए, हर दौर में एक दर्शक वर्ग रहा है। अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियां, अच्छे सीरियल पहले भी थे, बुरी कहानियां, बुरे सीरियल, बुरे दृश्य एडल्ट फिल्में पहले भी थी। सब जगह एक दर्शक वर्ग होता है। इनका भी एक दर्शक वर्ग है, वो इनको सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा कभी चलता नहीं है। एक जमाना था जब बड़ी खराब सी किताबें पढ़ने की रेलवे स्टेशनों के आसपास खूब बिकती थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये कुछ समय के लिए होती हैं, इनकी उम्र लंबी नहीं होती है। ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय तो होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जहन से बाहर भी बहुत जल्दी होती है।

0: आज के नए कॉमेडियन जिस तरह से कर रहे हैं, पहली चीज तो मैं उनको कॉमेडियन नहीं मानता हूं। और उनका एक दर्शक वर्ग है, वो कभी किसी के घर के शादी विवाह के कार्यक्रम में, किसी सामाजिक संस्था में जहां बहुत भीड़ हो, वो वहां परफॉर्म नहीं कर पाते। वो ऐसे 25-50-20 लोग बैठ गए सामने और उनको किस्सा गोई जैसा सुनाते हैं, तो वो अलग तरह का है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो पूरी यात्रा है उसमें एक पक्ष जो है बहुत बड़ा, वो अभिनय की दुनिया का है
0: जी।
1: ये कहाँ से शुरुआत होती है और इसमें कितना एंजॉय किया है आपने अभिनय की अपनी यात्रा में?
0: इसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है, और अभिनय करना तो मैं चाहता था शुरू से, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ना तो सुविधाएं थी, ना साधन थे, ना तो घर से इतने संपन्न थे कि घर से पैसे लेकर आ जाएं, ना मुंबई शहर में कोई रिश्तेदार था जिसकी सहारा हो कि इनके पास चले जाएं। तो हमारे लिए सपना ही था, लेकिन कहते हैं कि सपना अगर अच्छे से देखो तो वो भी पूरा हो जाता है। और जो एक 15-16 साल की उम्र का सपना होता है ना, वो पूरा जरूर होता है।
1: क्या बात है।
0: वो जो उम्र होती है 10वीं 11वीं जब पढ़ रहे होते हैं, उस समय सपने में ज़्यादातर हमें अपने क्लास की कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो उम्र ऐसी होती है, ज़्यादातर लड़कों को यही होता है, एक वो फिलॉसफी है, उम्र ऐसी होती है। मुझे उस समय सपने में दिखाई देता था कि एक मंच है और सामने सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, मैं मुंबई में खड़ा हूँ और मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ।
1: वाह वाह वाह।
0: ये सपना मैं 15-16 साल की उम्र में देखता था
1: और वो पूरा हुआ।
0: इसलिए वो पूरा हुआ कि उस उम्र में जो सपना देखा जाता है वो पूरा होता है। मेरे साथ के लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड का सपना देखा तो उसके साथ शादी करके अपने शहर में रह रहे हैं, उनका सपना ही पूरा हुआ है। मेरा अपना पूरा हुआ है।
1: जी जी
0: जी। सबका अपना अपना प्यार था, मेरा प्यार मंच था तो मुझे मंच मिल गया।
1: बिल्कुल। और बाद में एक्टिंग की दुनिया में चले आए और आपकी अपनी एक अलग पहचान एक्टिंग को लेकर बनी।
0: जी, मैंने कुछ सीरियल किए, मैंने लापता गंज किया है।
1: लापता गंज तो जैसे आपके साथ जुड़ गया है।
0: जी जी, लापता गंज किया मैंने, उसमें एक कॉमन मैन का कैरेक्टर किया, जिसमें एक ही एपिसोड में मैंने 5 तरह के कैरेक्टर किए, अलग अलग तरह के। फिर मैंने दूरदर्शन पे एक राशि विला सीरियल आता है वो किया, उसमें मैं लीड कैरेक्टर में था, उसमें उपासना सिंह हमारी बहन बनी थी, राजू खैर हमारे पिताजी बने थे, हेमंत पांडे हमारे बड़े भाई बने थे। ऐसे अलग अलग और भी बहुत से सीरियल किए, कुछ फिल्में की मैंने। एक मैंने ऐसी फिल्म की है जिसका नाम है कड़के कमाल के।
1: वाह वाह वाह।
0: और ये फिल्म है, इसमें नेपाल और हिंदुस्तान दोनों जगह की फिल्मों के कलाकारों ने मिलकर एक फिल्म की है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो हीरो हीरोइन नेपाल के हैं, आर्यन अधिकारी और नीता धुमाना, ये वहां के बड़े स्टार हैं नेपाल के।
1: जी जी।
0: और कुछ एक्टर वहां के थे और कुछ हमारे यहाँ के, तो उसमें राजपाल यादव हैं, दयाशंकर पांडे हैं, मैं हूँ, मुश्ताक खान है, ऐसे अच्छे कलाकार हैं उसमें काफी। तो वो फिल्म मैंने की है, कुछ और भी फिल्में की हैं मैंने। एक फिल्म मैंने की है लव की अरेंज मैरिज, ये विनोद भानुशाली प्रोडक्शन की फिल्म है
1: जी।
0: और इसमें मैं राजपाल यादव और अन्नू कपूर जी का दोस्त बना हूँ।
1: वाह वाह वाह।
0: तो ऐसी कुछ फिल्में की हैं मैंने।
1: कितना डिफरेंट है मंच पर परफॉर्म करना और एक्टिंग करना?
0: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। क्योंकि सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि मंच पे हम करते हैं एकल अभिनय, उसमें हमें किसी का आपको क्लू नहीं चाहिए होता है, खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले का डायलॉग कब खत्म हो रहा है,

0: उसका डायलॉग किस रेंज पे था, उसने किस टोन में बोला है, वो किस सुर में था, उसके सुर से अपने सुर को मिलाना होता है। वो अगर गुस्से में है, किस भाव में है, तो हमको भी उसी हिसाब से बात करना है।
1: बिल्कुल
0: तो अभिनय बहुत डिफरेंट चीज है।
1: बिल्कुल, तो अभी अभिनय और कॉमेडी दोनों तरह की चीजें लगातार चल रही हैं।
0: जी, जी।
1: इतनी देर से हम बात करें, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म करें आप हमारे लिए।
0: जी बिल्कुल, मैं अभी जो बच्चों को लेकर कुछ सुनाता हूँ,
1: तो
0: उसके ऊपर से मैं सुनाता हूँ कि आज के बच्चे क्या तेज दिमाग के बच्चे हैं। हम लोग तो कैसे थे, हमें तो पता ही नहीं होता था। अगर कोई कुछ बात करता था, घर में कोई आ जाए, तो मेहमान के सामने बोलने में थोड़ा सा संकोच करते थे, डरते थे। बोलने से पहले सोचते थे कि हमारे बोलने के बाद हमारे पापा जी का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आज के बच्चे एकदम बिंदास हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मेरे से बात कर रहा था, तो उससे पूछा मैंने, कहा बेटा एक चीज बताओ, जब ये कॉर्न तवे पर फूट कर पॉपकॉर्न बनता है गरम तवे पर, तो ये उछलता क्यों है? तो बोलता, अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। तो आज के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं, ऐसी बातें हैं उनकी कि जो उनका जवाब होता है वो हमारी समझ से बाहर होता है।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। तो ये जो पूरा परिदृश्य जहां अब चारों तरफ कॉमेडी है, लोग पॉडकास्ट में भी कॉमेडी कर रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, टेलीविजन पर कंटेंट है, ओटीटी पर कंटेंट है, तो क्या एक कॉमेडियन के तौर पर आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं?
0: हाँ, बढ़ तो गई हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि पहले अगर एक आधा घंटे का कंटेंट किसी के पास होता था तो बरसों बरस उसको सुनाते रहता था। एक शहर में सुनाया, कल जाके दूसरे शहर में वही सुना दिया, परसों तीसरे शहर में। आज हमारे साथ ये कि यहाँ हम कुछ सुनाते हैं और वो वीडियो बन जाते हैं और वो रातों रात वायरल हो जाते हैं सब जगह। तो जब हम अगले शहर में पहुँचते हैं तो उनके पास हमारा कंटेंट पहले से पहुँचा हुआ होता है। तो वहाँ जाके हमें कुछ नया सुनाना होता है,
1: हर बार कुछ
0: तो
1: नया,
0: हमेशा कुछ नया करते रहना
1: पर पुरानी चीज़ों की जो लोकप्रिय हो चुकी हैं उनकी फरमाइशें भी आती हैं।
0: हाँ, फरमाइश तो आती है, ये है, ये भी एक फायदा है कि लोगों का एक मनोविज्ञान है कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे पहले सुना हुआ है।
1: आपके लिए किस तरह की फरमाइशें आती हैं?
0: मैं अगर मध्य प्रदेश में हूं तो वहां की बुंदेली भाषा के लोग चाहते हैं कि मैं उनको कुछ सुना दूं, और अगर मैं यहां हूं तो मेरा अपना जो स्टाइल है, लोग चाहते हैं कि वो सुनाए।
1: तो हम भी चाहते हैं आप बुंदेली में सुना दें।
0: हाँ, क्योंकि हमारा ये रेडियो तो पूरे बुंदेलखंड, पूरी दुनिया में जाता है, तो बुंदेलखंड के लोग भी सुनते हैं इसको। तो बुंदेली में वहाँ के लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है, वो जब बात करते हैं तो बड़ा तेज दिमाग होता है और कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो वहाँ के लोग ही समझ पाते हैं, भाषा का है वो। जैसे एक इंटरव्यू था और एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करे। अब एक आदमी गया, बोले मे आई कम इन सर? अरे बोले तुम अंदर आने में इतनी बात कर रहे हो, काम क्या करोगे, जाओ यहाँ से। तो दूसरा गया, उसने हिंदी में बोला, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोले आप तो उनसे भी ज्यादा बात कर रहे हो, यहाँ उस आदमी की जरूरत है जो कम बात करे। अब ये हमारे यहाँ का था, बुंदेलखंड का, उसने दोनों को बुलाया, बोले क्या पूछा? अरे बोले मैंने अंग्रेजी में बोला, मुझे अंदर नहीं आने दिया। बोले मैंने हिंदी में बोला शुद्ध, मुझे भी नहीं आने दिया। अब बोले देखो मैं जा रहा हूँ। ये गए, इन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा ऐसा धक्का मारा, सर अंदर किया और बोले काय आए। बोले आज
1: दो ही शब्दों में निपटा दिया,
0: दो शब्दों में निपटा दिया। तो बोले आ जाओ, तुम्हारी जरूरत थी।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: ऐसे लोकल की भाषा के
1: बुंदेलखंड की स्पिरिट को आपने बिल्कुल पकड़ा है।
0: जी जी जी,
1: है ना। और कुछ बुंदेली में?
0: अब बुंदेली का मेरा एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो वहां पर लोग बहुत सुनते हैं और बहुत वायरल है।
1: जी,
0: थोड़ा सा 2-2.5 मिनट का है वो,
1: जरूर।
0: तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहती हैं और नर्मदा जी जो है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मतलब नर्मदा जी के कारण मध्य प्रदेश पल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उन्हीं उन्हीं का जो जल आता है उसी से सब खेती सिंचाई सब होती है। तो बड़ी श्रद्धा का विषय है हमारे यहाँ, और लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं। और जब वो स्नान करने जाते हैं तो हर बड़े शहर से नर्मदा जी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ऐसे गांव-गांव से निकली हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं, नहाने स्नान करने। तो ज़्यादा आवागमन के साधन नहीं है, एक सरकारी बस चलती थी, उसके बाद एक 3 पहिए का टेम्पो चलता जिसमें 15-20 लोगों को वो बिठा के, और वो ड्राइवर ऐसा लटक के चला,
1: लंबा वाला।
0: हाँ, तो वो टेम्पो में एक गांव की महिला पहली बार बैठ के नर्मदा जी में स्नान करने जाती है। अब रात को ही तैयारी शुरू हो गई है, तो हमारे यहाँ जो बच्चों के जो नाम होते हैं वो बड़े गांव के हिसाब से रख देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: शहर जैसे अच्छे नाम नहीं होते। काला देखा तो करिया नाम रख दिया, गोरा देखा तो भूरा रख दिया, थोड़ा हेल्दी देख गया तो लड्डू गोपाल रख दिया। तो उनके बच्चे थोड़ा काला था तो उसका नाम रख दिया था करिया। अब पिताजी को वहां दद्दा बोलते हैं और माँ को बाई बोलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो करिया के दद्दा यानी करिया के पिताजी और करिया की बाई यानी करिया की माँ। अब दोनों की बात चल रही है, कल नर्मदा जी नहाने जाना है, तैयारी शुरू हुई है। करिया के पिताजी यानी करिया के दद्दा ने बोलना शुरू किया, अरे करिया की बाई उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो, भुनसारे अपन नर्मदा सपड़वे चले
1: भुनसारे
0: और सकारू जल्दी उठ जाइयो, लेट हो गए और बस निकल गई तो समस्या हो जाए, फिर कछु साधन नहीं मिले।
1: हो
0: अब सुबह पहुंचे तो इत्तेफाक से बस निकल गई,
1: निकल गई।
0: तो अब करिया की बाई ने पूछा कि अब का हुई है,
1: बस तो गई,
0: अब का हुई है, बस तो गई। तो अब इनकी बात चल रही है, करिया के दद्दा बोले कछु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चलिया। अब वो आगे कैसे गए, वो पूरा किस्सा लौट के आके वो महिला अपनी एक पड़ोस की महिला को बता रही कि क्या हुआ।
1: ठीक है,
0: बोले कल का भाव आई जी करिया के दद्दा कहन लगे कि चल तेरे का नरब दस पड़े धल ना तो भाई भंसारे हम उठे बनिंदा बास्केट में धोतिया लपेट के धरी और सकारू सकारू उठ के बास्केट हाथ में लेके बस स्टैंड तन चले गए। वहां जान के देखे भाई तो बस निकल गई थी। तो मैंने कही अब भगवान जाने का हुई है। तो भाई जी करिया के दद्दा मुहे आगे ले गए, आगे ले गए भाई वे भाई के सो टीन को डब्बा सो ठाड़ो बा को आगे सो सुंगरिया जी सोमो। तो मैंने कही काय करिया एक दद्दा जो का जल थे, तो वो कहने लगे जाको ना टेम्पू है,
1: टेम्पू
0: तो अपन जई से चल हैं आज। तो भाई जी करिया के दद्दा तो उमदा ड्राइवर के बगल में आगे बैठ गए और मेरे का जो पीछे पटिया में बिठार दई। अब मैं वहां बैठी बैठी सोच रही अब भगवान जान का हुई है जा मैं। तो भाई ये के तो बड़ो करिया से मोड़ा आओ माने बा को ढकना ऊंचो कर दो। और मैं वहां में बैठी बैठी सोच रही कि अब भगवान जान का हुई है। तो भाई बाने एक कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो। तो मैंने कहा ये उमेर राम जो के सो टेम्पू जल थे। अब मैं सोच रही अब भगवान जान का हुई है जा में। तो भाई बा करिया मोड़ा ने एक रस्सी निकारी और बाके बोनट में ऐसी लपेट दई। ओबर रस्सी लपेट के जीवान बाकी रस्सी पकड़ के एक पांव बाके टायर पे धरो। ओबर ड्राइवर से कहने लगो हूं। तो भाई ड्राइवर ने भी कह दई हूं। और जैसे ही ड्राइवर ने हूं कही जीदवा ने जोर से खींच के तान दो तो फटफटा के चालू होगा। अब वो ऐसो डगमगा रहो। तो मैंने कही काय भैया अब भगवान जाने जा मक्का हुई है। तो जी जी बा ड्राइवर के बगल में एक टेढ़ो सो हैंडल लगो थो, बान बाय पकड़ के भीतरे करो फिर बाहर करो फिर भीतरे करो। मैंने कही जो का जल थे। तो बगल वाली बाई कहन लगी जो गेयर है जैसे चला थे। अब बाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक रपटा पे धीरे धीरे ऐसो चढ़ रहो। तो मैंने कही काय ड्राइवर भैया जो ऐसो चढ़ा चढ़ा ऐसो न हो जाए
1: पलट तो नहीं जाएगा।
0: तो मैंने कही तू रोक दे तो मैं उतर जाऊं। तो वो कहन लगो रोकत नहीं हूं, रोक हूं तो पीछे लुढ़क जे। तो मैंने कही फिर लगे जान दे और आगे जान के जीजी वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा।
1: अरे दद्दा रे
0: फिर काय की नरब दजी जी भाई डबराम सपड़ के लौटे आए।
1: क्या शुद्ध बुंदेली मजा आ गयो। क्या शानदार बुंदेली रचना आपने सुनाई, सच में मजा आ गयो। ये जो बुंदेली लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इस भाषा की जो मिठास है,
0: जी जी जी
1: है ना, बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड है,
0: सच्ची बात।
1: तो जो प्रांतीयता कॉमेडी में आप लेके आते हैं वो कितना काम करती है मंच पर?
0: बहुत काम आती है ये भाषा जो है। पता नहीं क्यों भाषा को लेकर बहुत विवाद देखने को मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ भाषा कभी विवाद का विषय होती नहीं है। भाषा सिर्फ संवाद का विषय होती है। हम आपस में बात करते हैं, आप अपनी संवेदनाएं अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं शब्दों के माध्यम से, वो भाषा है। भाषा के लिए क्या लड़ना। मैं तो सोचता हूं कि सारी भाषाएं सीखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: सारी भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन हमारा देश इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है और इतनी सारी भाषाएं हैं, संभव नहीं है कि कोई सारी भाषाएं सीख पाए। और जब भाषा नहीं आती और जबरन बोली जाए या जबरदस्ती बुलवाई जाए या नहीं आ रही तो भी बोली जाए, तो फिर आदमी हास्यास्पद हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ, भाषा नहीं आती बड़ी समस्या होती है। मैं तो नया नया मुंबई में आया था, मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी तब। मैं एक बस में चढ़ा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो बोली

0: लव कर मैं उसके चक्कर में चार स्टेशन आगे चला।
1: वो लव कर बोल रही थी।
0: मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर बोल क्या रही है। भाषा आना बहुत जरूरी, सीखना पड़ता है। मैं लोखंडवाला में रहता था, 2005 की बात है, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। लोगों के घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, इतने लोग डूब गए। 4 महीने बाद मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे, होर्डिंग वहां पर, उस पे लिखा बाढ़ दिवस का शुभेच्छा, बाढ़ दिवस का शुभेच्छा। मैं परेशान कि यार 4 महीने पहले लोग डूब के मर गए, ये कौन है जो बाढ़ दिवस की शुभेच्छा दे रहा है। फिर किसी ने बताया जन्मदिन को बाढ़ दिवस बोलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ रह के सारी भाषा सीखनी पड़ेगी। क्योंकि भाषा आना बहुत जरूरी। फिर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला।
1: अच्छा,
0: मेरी जो पत्नी है वो मराठी है।
1: अच्छा, तो आपने ये
0: तो अब मैंने शादी की, तो अब वो मराठी है, उनको सारी मराठी आती
1: है। उनका ताल्लुक कॉमेडी से है या वो आपकी कॉमेडी करती
0: नहीं
1: है?
0: वो बिल्कुल नहीं है, और इस लाइन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं चूंकि कलाकार हूँ, कोई कुछ बोलता है तो याद कर लेता हूँ। अब मुझसे कोई अगर मराठी में कुछ बोलता है तो मैं ध्यान से सुनता हूँ, वह घर पे जाके पूछता हूँ ऐसा बोला था, ये मेरे लिए ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगले दिन उस आदमी से बहस करने पहुंचता हूँ।
1: ऐसा है
0: तो वो बोलता है तुम्हारा ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब है क्या, तुमको कल बोलो आज लड़ने आते हो। मैं बोला भाई तुम बोल के रह जाते हो, मुझे घर पे क्लियर करना पड़ता है जाके।
1: बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि लड़ाई किस भाषा में होती है, हिंदी में कि मराठी में?
0: लड़ाई तो देखो इसका एक बड़ा फायदा है,
1: हाँ,
0: दो भाषीय लोग अगर शादी कर लें,
1: हाँ,
0: और ना तो आप उसकी भाषा सीखो और ना वो आपकी सीखे,
1: बिल्कुल
0: उसमें फायदा ये होता है जब लड़ाई होती है तो वो अपनी भाषा में गाली दे, अपन अपनी में, तो ना उसको समझ में आए ना अपने को समझ में आए।
1: तो वो मराठी में शुरू हो जाती है।
0: ऐसा होता नहीं है।
1: उनके सामने आपको कितना बोलने को मिलता है, क्योंकि आप मंचों पर इतना सब परफॉर्म करते हैं, पर घर पर आप परफॉर्मर हैं या लिसनर हैं?
0: एक्चुअली एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है, अ गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही आगे चल के बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। तो मैं मंच के ऊपर बोलता हूँ
1: और घर में
0: बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कितना अच्छा वक्ता मुझे मिल जाए और मैं उसको घंटों बैठ के सुन लूं। मैं आज भी बहुत अच्छा लिसनर हूं।
1: आपने अपनी पत्नी पर कोई कॉमेडी बनाई है?
0: बिल्कुल बनाई है,
1: सुनाई है।
0: देखिए मैं,
1: लेकिन याद रहे कि घर पे खाना मिले आपको?
0: हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे देख ही रहे हैं मेरा रंग रूप कैसा
1: जी,
0: है
1: जी।
0: लेकिन मेरी पत्नी एकदम गोरी है। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने मुझसे शादी कैसे कर ली। अब आप सोचेंगे कि चलो उनका तो वहां जाके माइंड डाइवर्ट हो गया, उनके पिताजी को सोचना चाहिए था कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ। तो यहाँ भी मेरी लॉटरी लगी। मेरे जो ससुर हैं वो कोल माइंस में नौकरी करते हैं।
1: लो
0: तो दिन भर वो कोयले की खदान में रहते हैं अंदर, उसी को देखते हैं। जब उनने मुझे देखा तो बोले उससे तो यही ठीक है। तो ऐसे मैं अपने पर्सनल लाइफ पे भी कॉमेडी बनाते रहता हूँ।
1: क्या बात है, बहुत सही है। अच्छा, कॉमेडी की दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं ये सब टेलीविजन सीरियल्स और रियलिटी शोज, कॉमेडी शोज देख करके वो भी एक दिन नाम कमाएं। आप संघर्ष के उसी रास्ते से आते हैं कि एक छोटे से शहर से मुंबई शहर तक का सफर आपने तय किया है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप कि ये रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल है और कितना धीरज रखना पड़ता है?
0: देखिए मैं एक बात मानता हूं कि हमारी जो फील्ड है कलाकारों की, इसमें मुंबई आने के बाद आपका कला जो है वो 10-20% चलता है और 80-90% भाग्य चलता है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आप मुंबई नहीं भी आएंगे तो उदय दाहिया की तरह आपको गांव से बुला लिया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैं मुंबई नहीं आया था,
1: यस,
0: यहां आकर मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है। मुझे तो मुंबई से लोग जाके गांव से उठाकर लेकर आए।
1: बिल्कुल।
0: वो उसका एक ही कारण है कि मैं जो काम कर रहा था उसको इतनी ईमानदारी से कर रहा था, और मैं कभी सोचता ही नहीं था कि यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। ये तो मुझे लोग खींच रहे हैं, मेरे पास आओ, यहां आओ। तो बस काम अच्छे से करते रहो, आपसे आपके आसपास के लोग कहने लगेंगे कि भाई तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम कहीं और जाओ। अपने आप रास्ता बनता जाएगा। लेकिन कभी भी किसी की बातों में आकर अपना शहर मत छोड़िए। एकदम से किसी बड़े शहर में मत पहुंच जाइए।
1: हाँ।
0: जैसे छत पर चढ़ने के लिए 15-20 सीढ़ियां होती हैं और आप एक एक के चढ़ के फिर आप ऊपर पहुंचते हैं, यही यहाँ पर लागू होता है। आप पहले अपने शहर में करिए, अपने स्कूल में करिए, घर में करिए, मोहल्ले में करिए, शहर में करिए, आसपास के शहरों में करिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे सब पसंद कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके रास्ते खुलते जाएंगे और लोग खुद आपको बुलाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत सही।

0: ही सलाह आपने दी है और इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली, आपने किशोर कुमार का नाम भी लिया कि 87 में उनसे आपको प्रेरणा मिली थी, लेकिन किसी गाने का जिक्र अभी तक नहीं हुआ, तो अपनी पसंद का एक गाना बताइए जो अभी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: वैसे तो किशोर कुमार जी के इतने सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है और उनमें से कोई एक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक गाना है जो डुएट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गाना, वो है फिल्म डॉन का, क्योंकि इस गाने में ऐसा लगता है जैसे मैं ही अपील कर रहा हूँ, जिसका मुझे था इंतजार
0: वो घड़ी आ गई।
1: वाह, तो मेरी जिंदगी में वो घड़ी आ चुकी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो वाला गाना बजाया जाए।

0: विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन। एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
5: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
4: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
6: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा

0: विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज महान अभिनेता सदाबहार देव आनंद की याद का दिन है। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। एवरग्रीन देव आनंद के फिल्मी सफर का आगाज हुआ था 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। तो आइए यादों की महफिल में आज याद करते हैं हिंदी फिल्मों में एक लंबी और सफल यात्रा तय करने वाले पद्मभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता निर्देशक हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन यानी के सदाबहार

निर्माता, निर्देशक, हीरो और पहले रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को सुनकर उनके गीत। तो साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है गाइड।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जुएल थीफ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में स्वागत है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: काला बाजार, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तीन देवियां।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है जय देव का और फिल्म का नाम है हम दोनों।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने याद किया सदाबहार रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

साथ बिताए पल हमेशा दिल में रहते हैं। पास बैठकर बीती रातों की कहानी सुनते सुनते कब दिन ढल जाता है पता ही नहीं चलता। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में जो ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, इन कलाकारों के नाम लिख दीजिए और इस अभिनेता का देव आनंद के साथ क्या रिश्ता है वो भी हमें बता दें। इस गीत में आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत है बप्पी लहरी का, गीतकार है अमित खन्ना और फिल्म का नाम है चलते चलते। और साथ ही अपने विचार, अपने जवाब हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे वो हमें मिल गए। विशाल आनंद अभिनेता, निर्माता, निर्देशक देव आनंद के भतीजे हैं और विशाल आनंद ने इस फिल्म में अभिनय किया था। और साथियों, जो मैसेज मिला ये है कि इस फिल्म की खास बात ये है कि इसी फिल्म से मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी को बड़ा ब्रेक मिला था। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे रवि गुप्ता और आशा, यानी कि विशाल आनंद, सिमी ग्रेवाल, नाजनीन और डॉक्टर श्रीराम लागू। साथियों, बिछड़ के फिर मिलेंगे, यकीन कितना है, महज ख्याल है मगर हसीन कितना है। जिंदगी का सफर मुलाकातों और जुदाई का एक ऐसा सिलसिला है। हर मिलन के बाद बिछड़ना पड़ता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद का दिया जलता रहता है कि हम बिछड़ कर फिर मिलेंगे। ये एक ऐसा एहसास है जो उम्मीद और रिश्तों की गहराई को बयां करता है। मिलन की आस बिछड़ने के दर्द को कम करके दिल में नई आशाएं जगाती है। वक्त के साथ दूरियां कम होती जाती हैं और दोबारा मिलने के रास्ते बनते हैं। सच्चे रिश्ते फासलों से कम नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। बिछड़ना अंत नहीं बल्कि एक नए और खूबसूरत मिलन की शुरुआत का इंतजार है। साथियों, जब कोई आपसे मिलकर या मुलाकात के बाद जाने लगता है तो आप उन्हें कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बताएं हमें भी। और किताबी भाषा की जगह थोड़े आसान भाषा में अपने जवाब लिखें। दोस्तों, स्कूल कॉलेज के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले मिलकर बिछड़ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग दोबारा मिल भी जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि अचानक ऐसे लोग सामने आ खड़े हुए या किसी डगर पे दोबारा मुलाकात हो गई तो आपको कैसा लगा? उस खुशी को हमारे साथ बांटिए और साथ में ये भी बताइए कि मुलाकात के बाद, यानी कि टाटा, बाय बाय, सायोनारा जैसे कौन से गीत आपके जहन में और मन में इस वक्त आ रहे हैं, हमें वो भी बताएं। और अब बात होगी 1970 में आई फिल्म आन मिलो सजना की, एक मशहूर बॉलीवुड संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसकी कहानी प्यार, धोखे और रिश्तों के उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द घूमती है। कई नाटकीय मोड़ आते हैं जहां अजीत और वर्षा के प्यार की परीक्षा होती है और अंत में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये अजीत, वर्षा, अनिल और सावित्री की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। तब तक आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, अरुणा ईरानी, निरूपा रॉय, सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद। हमारे साथियों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और जवाब लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी किसी का मिलना ही हमारी मंजिल बन जाता है और फिर उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। चाहत बस इतनी होती है कि वो थोड़ा और ठहरे, क्योंकि कुछ साथ पल भर के नहीं होते, उम्र भर के लिए अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आपने टॉपिक को बिल्कुल सही पकड़ा है।

कुछ रिश्तों में भरोसा इतना गहरा होता है कि जुदाई का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है साथ यूं ही बना रहे और ये सुहाने पल कभी जल्दी ना ढले। मोहब्बत शायद यही है, किसी के आने से दिल को मंजिल मिल जाए और उसके जाने का ख्याल आते ही दिल कहे ठहरो अभी तो कुछ पल और साथ रहो। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत में हमें भरोसा भी नजर आया तो दिल ने कहा, भरोसा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, उसे बनाने में वक्त लगता है लेकिन एक छोटी सी ठेस भी इसे हिला सकती है। भरोसा वो है जहां शब्द कम पड़ जाएं फिर भी दिल कहे तुम हो तो सब ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अर्पण का गीत परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया इसका इंतजार है। जब मिले हम तो थमी सी रह गई ये जिंदगी, तेरी आंखों ने कहा मैं हूं यहीं पर कहीं, फासले जितने भी हो अब इस जमाने के दरमियां तेरी धड़कन में धड़कता रहूंगा मैं हर घड़ी। हमारी एक साथी ने लिखा है कि जहां एक तरफ मंजिल पा लेने की खुशी है तो दूसरी तरफ किसी खास इंसान के बिना रहने की बेबसी और अधूरापन भी है। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुंच जाता है लेकिन वहां उसके साथ उसका वो खास शख्स नहीं होता तो वो सफलता या मंजिल भी अधूरी सी लगने लगती है। अगला कमेंट है कि आज फिर मैं लंबी यात्रा पर हूँ, ट्रेन में कार्यक्रम का लुत्फ उठाऊंगा, तो ठीक है सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज लाइव रहना बड़ा मुश्किल है, हमारे फॉर्म हाउस पर नेट बहुत वीक होता है, अगर सही रहा तो जरूर जुड़ूंगी, तो ठीक है कोशिश कीजिए नेटवर्क में आने की। एक साथी ने लिखा है कि नजरों ने जब से तुम्हें पाया है इस दिल को सिर्फ तुम्हारा ही साथ भाया है, तुम दूर जाने की बात करते हो जरा सोचो तुम्हारे बिना मेरी सुबह और शाम का क्या होगा।

इस हसीन मौसम की हर बूंद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अभी तो धड़कनों ने संभलना सीखा है। अभी से मुख मोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, बस इस बात का डर है कि ये वक्त कहीं हमें जुदा ना कर दे। आओ कुछ पल और पास बैठो, ताकि इन ढलती हुई रातों में हम अपनी अधूरी दास्तां को पूरा कर सके। बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिछड़ गए तो फिर मिलेंगे हम दोनों एक बार, या इस बस्ती में या इसकी हदों के पार। साथियों, हमारी जिंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है। दुनिया की इस भाग दौड़ में या हालात की वजह से रिश्ते, नाते, मोहब्बतें, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाते हैं। कहते हैं कि दिल की लगन हो सच्ची तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और मिलकर बिछड़े हुए दोबारा मिलते हैं। रिश्ते और मोहब्बतें वक्त और फासलों से ज़्यादा असर रखती हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। सदाबहार मेलोड्रामा फिल्म आया सावन झूम के जय शंकर और आरती की कहानी। अनजाने में जय की गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर और मौत, जो कि आरती के पिता थे। इस भयानक हादसे के बाद एक गहरा अपराध बोध, उसके बाद कहानी में गलत फहमियाँ, उतार चढ़ाव, सच्चाई का सामने आना और एक समाधान पर कहानी ख़त्म। तो बताइए कि ये जय आरती कौन थे, और आया सावन झूम के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी हमारे FB पेज पर लिख दे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

आवाजों में गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, और आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

0: एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए,
2: हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। सुधीर और विजय यानी के संजीव कुमार, महेश कोठारे, निरूपा रॉय, अजीत, कमल कपूर और कुमकुम। इस फिल्म के निर्देशक थे कोलजी प्रत्यगात्मा और निर्माता थे एलवी प्रसाद। गीत में साथियों आवाज़ आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम था राजा और रंक। आवाज की दुनिया के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफर, तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं। ये शुभ मंगल यात्रा का धार्मिक प्रावधान है। एक साथी ने लिखा है कि मेरा प्यारा पालतू लैब्राडोर बीटल नाम था उसका, दो दिन पहले वो गुजर गया हमेशा के लिए मुझसे। उन्होंने लिखा है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है। एक साथी ने लिखा है कि फूल खिले हैं तो झड़ेंगे ही, बादल हैं तो खिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही, और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं शमसुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, बिस्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी, आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इससे जुड़ा गुजराती भजन है, एकला जा आव्या मनवा, एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला, परिवार बना, उसी से बना ये जीवन चक्र, यूं ही

चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती जैसा साथी साथ हो तब जीवन का सफर सुरीला मधुर बन जाता है। ये अगला कमेंट है कि अक्सर देखा गया है कि प्यार में कई प्रेमियों के दिल टूट जाते हैं, पर उन्हें जीवन में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड, जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी, जिसमें सफर के दौरान रोमांस, कॉमेडी और विदेशी नज़ारों की यात्रा को दिखाया गया है। आखिर में सब साजिशें बेनकाब होती हैं और कहानी का सुखान तो होता है। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर की नायिका कौन थी, जिनके माता पिता भी महान कलाकार हैं, और साथ में इस फिल्म के खलनायक का भी नाम लिख दे। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं इसमें किसकी आवाज़ें हैं वो भी हमें बताएं, और साथ में इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लिख दें।

साथियों आपके जवाब हमें मिल गए हैं। राज कपूर, राजश्री, प्राण, ओम प्रकाश, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अमिता, असला, अचला, सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड। और अभिनेत्री राजश्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माता जी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफर के बन के हम सफर, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

मित्रों, जीवन में कई मोड़ आते हैं। खुशियों में हम खुश होते हैं, दर्द में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कभी तो ये राहें आसान लगती हैं, लेकिन कभी कभी ये राहें इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम अपना धैर्य खो देते हैं। कठिन समय शायद हमारी परीक्षाओं का समय होता है, जिनमें कभी तो हम धैर्य रखते हैं और कभी टूट भी जाते हैं। जिंदगी के ताने बाने में धैर्य या सहनशीलता को धारण करना आत्म संयम को बढ़ाता है। धैर्य मुश्किल हालात में हमारे लिए किसी ढाल की तरह होता है और हम मुश्किल वक्त से पार पाने में समर्थ हो जाते हैं। जिंदगी फिर किसी प्यार के नगमे की तरह लगने लगती है।

स्वभाववश हम विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कभी अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस करते हैं कि लगता है जिंदगी यहीं थम गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसमान के पंछियों की उड़ान जो नाजुक पंखों के भरोसे ही तय होती है, उन नदियों की धाराओं को देखिए जो रास्ते के पत्थरों को भी पार कर आगे निकल जाती है, वो माली जो फूलों और फलों के आने का इंतजार बड़ी धैर्यता पूर्वक करता है, चातक पक्षी स्वाति की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, धरती धैर्य धारण कर अच्छे ऋतु चक्र में फसलों से लहलहा जाती है, तो क्यों ना हम अपने मन को इन पलों में धीर धरना सिखाएं।

एक सा नहीं होता, बदलता रहता है। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह होती है। एक नया सवेरा जागता है। उम्मीद की नई किरणें हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देती हैं। हौसला जो हमने अपने दिल को बंधाया था, इस मुश्किल वक्त में संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा एक तरह से हमें दे जाता है। मुश्किल वक्त में न सिर्फ हम धैर्य रखें बल्कि औरों को भी धैर्य बंधाएं। मुश्किल घड़ियां जरूर गुजर जाएंगी और ये पल खुशियों में बदल जाएंगे।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गिरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव,

0: प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

0: ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज

जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है पतीता।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज है हेमंत कुमार की, फिल्म का नाम है 16वां साल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

0: फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बात एक रात की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत हेमंत कुमार की आवाज में। तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जाल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
4: जरा नजरों से

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, ग्राम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नौसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वद देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदा राज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।
1: मनचाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चौगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। लाहौल वाला
2: नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: अल्लाह मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार। ए मैं मर गई। अल्लाह
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी।
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नया बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से
2: सरकार।
1: अब जाती है के
2: मुझे ना निकालिए सरकार।
1: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरे अच्छे सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
2: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
1: ओहो कैसी बातें कर रही है हलीमा।
2: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार। बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे। पहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
2: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था।

0: बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी। किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
0: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब?
0: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रही हूँ।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
0: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं, ये हरगिज नहीं होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
0: उनके हुक्म से तो नया बूबू ने मुझे भेजा है।
1: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
0: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
1: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
0: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बूबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
1: सरवरी को? ला हौल वला कुव्वत।
0: हाँ सरकार, बूबू मुझसे खफा नहीं, क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
1: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
0: नया बूबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
1: नहीं नहीं हलीमा, छोड़ो।
0: मेरे नवाब।
1: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
0: छोटे सरकार।
1: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
0: या अल्लाह।
2: अरे भाई जहांगीर साहब और छमन मियां, अरे भाई क्या हाल चाल है?
1: आपकी दुआ है अफजल भाई।
2: अम्मा यार, क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
1: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है। कहिए क्या काम है?
2: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अम्मा अम्मा, ये क्या किस्सा है?
1: कौन सा किस्सा?
2: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
1: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
2: वजह?
1: मैं इसे बदकारी समझता हूँ।
2: ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
1: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
2: अम्मा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
1: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
2: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागलखाने पहुंचा दिए जाओगे।
1: ये घर कुछ पागलखाने से कम है? जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे हैं।
2: मैं हकीम साहब क़िबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
1: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है। इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
2: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
1: आप तशरीफ ले जाइए।
2: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
1: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
2: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छमन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं। बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलाद नरीना ना पैदा हुई।
1: औलाद नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
2: मगर बांदी से क्यों भिदकते हो? शादी वक्त आएगा, हो जाएगी।
1: और बांदी?
2: बांदी काम आएगी।
1: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगी।
2: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म और रिवाज को नहीं समझती हैं।
1: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना होगा?
2: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
1: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
2: अमा अजीब हवनक आदमी हो।
1: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा। अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
2: ला हौल वला कुव्वत, मियाँ तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
1: जब अब्बा हुजूर तवायफों के हाथ जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती हो।
2: ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
1: जब्बार अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है। मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
2: तो एक काम करो साहबजादे।
1: क्या?
2: जाते जाते मैं मिनहारन बी को भेजे देता हूँ।

0: चूड़ियां पहन के बैठे रहो घर में।
1: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नाया बुबू?
2: मुझे नाया बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
1: हलीमा,
2: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती
1: है। नहीं हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई, हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
2: मेरे अच्छे नवाब।
1: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा, हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो, तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा। रहम करो हलीमा।
2: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल कैसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
1: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
2: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
1: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
2: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालिएगा। याद नहीं, सिकंदर नवाब ने अपनी निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
1: कौन सिकंदर नवाब, वो पगले चचा?
2: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
1: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
2: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मिराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
1: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
2: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
1: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
2: मगर हूँ आपकी।
1: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
2: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
1: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितने सर्द हो रहे हैं।
2: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
1: हलीमा हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे, तुम हमारी दुल्हन हो। खुदा और रसूल खुदा की कसम, तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा हलीमा।
3: हर बात की एक हद होती है नायाब, लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई, जी का आजार हो गए, अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं।
4: ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल्ले सी दिखाई देती है।
3: सच? तुम्हें खुदा की कसम।
4: हाँ बेगम, भलाई नाखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
3: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
4: आ जाएगी, आप देखते जाइए, जी से उतरी के साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
3: तो फिर निगौड़ी को गाँव भिजवा दो।
1: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
2: मेरा जी चाह रहा है।
1: हमें छोड़कर चली जाओगी?
2: जल्दी आ जाऊंगी।
1: कितनी जल्दी?
2: थोड़े दिनों बाद।
1: कितने होते हैं थोड़े दिन?
2: यही कुछ 6-7 महीने।
1: 6-7 महीने?
2: आहिस्ता बोलो।
1: हम मर जाएंगे।
2: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर मेरे नौशा, बुरी फाल मुझसे न निकाली, अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खिदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
1: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा? जान, ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
2: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी, सभी नहीं मर जाती। सनोबर की और बात थी, बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय, मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
1: बच्चा?
2: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
1: मेरे सर की कसम खा।
2: नहीं अल्लाह नहीं।
1: हलीमा, तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
2: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
1: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं।

0: तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा
1: जी।
0: बच्चा कब तक होगा?
1: 6 महीने बाद।
0: अगर रोएगा तो हम पाजी को बहुत डांटेंगे।
1: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
0: तुम गांव नहीं जाओगी।
1: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
0: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
1: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
0: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
1: सरकार।
0: शट अप।
2: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
3: ये लीजिए।
2: ये शह वो मारा।
0: भाईजान मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
3: अम्मा इस वक्त बड़े जोर की बाती जमी है खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
0: भाईजान
3: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
2: शह हजमत नवाब शह।
0: उफ प्लीज भाईजान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
3: उफ वो कहो क्या कहना चाहते हो।
0: जरा मैं
3: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
0: भाईजान
3: अम्मा कह भी चुको।
0: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
2: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
0: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
2: सरवरी जालिम पटाखा है पटाखा, है क्या उठान है। अम्मा उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
0: अफजल भाई
3: अच्छा जाने दो, आगे चलो।
0: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा
3: मियां, ये महल का पुराना दस्तूर है।
0: वो गाय भैंस नहीं, वो
2: कहो कहो शर्मा क्यों गए?
0: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
3: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
2: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता। प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
0: भाई जान,
2: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
0: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी है।
3: बहुत खूब, वो कब?
0: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
3: और निकाह काजी कौन था?
0: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
2: वल्लाह तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
3: जाओ मियां, क्यों वक्त जाया कर रहे हो। हाँ भाई अफजल भाई, दूसरी बाजी जमाएं। ला हौले वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ।
2: चमन मियां तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
3: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहां से।
0: भाई जान मैं
3: बदतमीज।
2: अरे अरे ये क्या करते हो हशमत मियां?
3: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसे हुई।
2: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
4: बेगम साहिबा एक बात तो हूँ।
5: कह भी चुको क्या कह रही हो।
4: नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है,
5: उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी।
4: अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए। फरागत पाकर विलायत जाने के इरादा है।
5: हाँ हाँ खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
4: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संतु न ले जाएंगी?
5: दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी। खैर से वो मेरे पास ही रहेगा।
4: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी।
5: अये है दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारो पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई।
4: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं। मुंह जले की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं।
5: ए बुआ तो कुछ मुंह से फूटो तो।
4: नजम बिटिया और हलीमा का बस 2-4 दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
5: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना। इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
4: जो हुकुम सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी। यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
5: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी।
4: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ साहबजादे भी जिद के पूरे हैं। बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
5: कभी सोचती हूँ नायाब तुम न होती तो।
4: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
5: जरी खासदान आगे बढ़ाओ।
4: लीजिए हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती है।
5: अच्छा दिखा लाओ।
4: अभी मतन तुम्हारी बेगम कहाँ है?

0: अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
1: ओहो नायाब बहू, कहिए महल में सब कैसे हैं? अच्छे तो हैं?
0: जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया,
1: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
0: लॉन्ड्री तो आपके पास हाजिर हुई थी।
1: क्या है?
0: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
1: क्यों?
0: रानी बिटिया, नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बंबई ऑर्डर जाएगा।
1: मैं क्यों पसंद फरमाऊं?
0: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
1: कौन छोटे सरकार? छम्मन मियां?
0: जी जी हाँ।
1: ओहो, हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
0: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजाक। ये देखिए, ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा, ये हाँ लाकेट।
1: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छम्मन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीबी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत
0: है? है। रानी बिटिया क्या फरमा रही हैं आप?
1: क्यों, क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
0: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधी है।
1: बच्चा तो छम्मन मियां का है ना।
0: बच्चा? कैसा बच्चा?
1: फरखुंदा खाला कह रही थी कि
0: बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांधियां इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती हैं।
1: बोलो बोलो, जब्बार की कसम खाकर कह दो।
0: ए बिटिया, आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाबजादे हैं, मगर वो लौंडे बांधी तो जी का बेलावा होती हैं, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता।
1: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से।
0: और क्या बिटिया रानी,
1: हशमत भाई की भी तो एक बांधी थी, क्या नाम था, सनोबर।
0: ये वो रानी बिटिया, ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए।
1: एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बबू?
0: शौक से पूछिए, मगर वो
1: नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम।
0: हाय हाय बिटिया रानी, जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रही हैं?
1: क्यों, अगर छम्मन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो।
0: अम्मा जान नहीं, इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रही हैं, वो होती तो मजाल न थी जो यूं मेरे मुंह पर जुतियां मारती। बेटी जान, ये गस भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी?
1: खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं, मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
0: बस बीवी, बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
1: आय हाय बुबू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
0: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरी सात पुश्तों को कहा।
2: ओहो नायाब आई है, चली कहाँ, क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे हैं?
0: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं, खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बम्बई से बनकर आएंगे।
2: नायाब बूबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है, समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
0: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
2: ऐ है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
0: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चे वाली होकर, तौबा मेरी तौबा, बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
2: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बन करके क्या बिगाड़ लिया, जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
0: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती हैं, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती हैं बेगम, नौच यू कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या अर्ज करूं बेगम से जाके?
2: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
3: अम्मा हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक तो मोरी में मुंह देते हो और।
4: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
3: मियाँ तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
4: कुद्दूस भाई आप नहीं समझते।
3: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे,
4: हलीमा मर जाए।
3: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे, वल्ला क्या पटाखा है।
4: कमीने पाजी,
3: छमन होश में आओ, क्या पागल हो गया?
4: हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा, चले जाइए यहाँ से। हलीमा, हलीमा।
5: जी सरकार।
4: कौन सरवरी?
5: जी।
4: तू यहाँ क्या कर रही है?
5: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है, कुर्ते में लगा दूँ?
4: चल भाग यहाँ से और हलीमा को भेज।
5: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हमाम में पानी तैयार है।
4: हलीमा कहाँ है?
5: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हमाम में लगा दिया है।

0: हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
1: अल्लाह हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
0: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी, चल भाग।
1: हम नहीं जाते।
0: कहाँ है हलीमा बता।
1: उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
0: बता, नहीं बताएगी।
1: बताती हूँ।
0: बोल।
1: वो उधर शागिर्द पेशे में है।
0: क्यों?
1: वो उसका जी अच्छा नहीं है। ए मियां, खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
0: फरखुंदा बाजी।
2: अरे छमन मियां, क्या पैदल भागे चले आ रहे?
0: साइकिल पर। फरखुंदा बाजी वो मर रही है।
2: अहे कौन?
0: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोले भको मत।
2: ठहरो,
0: वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
2: नहीं मियां, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं।
1: बुबू, नाया बुबू, अस्पताल की लारी आई है।
3: अस्पताल की लारी? दीवानी हुई है ना मुराद?
1: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
3: ये क्या किस्सा है नाया?
1: लारी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियां भी है।
3: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत।
4: लीजिए, वो आ गई।
1: तस्लीम मानी जान।
3: जियो, ये मैं अस्पताल की लारी क्यों आई है?
1: हलीमा को लेने।
3: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब?
1: इस वक्त बहस ना कीजिए, पहलोठी का बच्चा है। अगर
3: तुम्हारी बला से, तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
1: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
3: हद से न बढ़ो फरखुंदा।
1: मुझे मजबूर ना कीजिए मुमानी जान।
3: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
4: पुलिस? या अल्लाह,
3: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
1: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
0: नहीं, मैं उठा लूंगा।
1: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
5: आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
0: चुप रहो बेवकूफ।
1: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो,
0: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है?
1: आदा मामू जान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
0: हमसे पूछे बगैर?
6: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
0: मर जाने दो
6: अब्बा हुजूर।
0: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
6: नहीं,
0: तुम्हारी ये हिम्मत, एक जलील बांदी के लिए हमसे कुछ ताकत कर रहे हो बेशर्म।
6: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
0: क्या बकते हो मर्दूद, हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
6: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
0: तुम्हारे इतने दिमाग।
4: होश में आओ बेटे, मैं मुझे डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
6: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
4: अरे कहाँ जा रहा है छमन मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
6: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
4: ना जाओ मेरे लाल।
6: खुदा।
4: ना जाओ मेरे लाल, छमन।
0: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएगी।
4: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, मैं उसे जानती हूँ। ना मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
1: नाया बुबू, कैसे हैं चमन मियां के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
3: अरे मेरे कान नखा, मुझे छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
4: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है?
3: अरे बेगम, बस चांद का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत।
4: घर बार कैसा है?
3: अरे बेगम कुर्बान जाऊं, ना घर ना बार, वही तिल बराबर कोठरी है, बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी के उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छमन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
4: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।

यही विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। शाम के 4 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लम्हे, ये प्रायोजित कार्यक्रम है।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। दोस्तों, आज के समय में व्यस्त जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस लोगों की आदत बन चुकी है। बिना किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लिए लोग फार्मासिस्ट को समस्या के लक्षण बताकर दवाई ले लेते हैं। हालांकि ये आदत गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। आज हम इस लम्हे प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाइयों का सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। ड्राई कॉफ, टाइटनेस इन द चेस्ट, गले में दर्द और खराश के साथ कफ निकलने पर कफ सिरप लिया जाता है, लेकिन कफ सिरप के कारण सुस्ती, नौजिया, घबराहट, याददाश्त में कमी जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर के सलाह लिए कफ सिरप न लें। मामूली खांसी से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुकसान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए लैक्सेटिव मेडिसिन इस्तेमाल में लाया जाता है। साधारण तौर पर किसी भी डिलीवरी या सर्जरी के पहले पेट साफ करने के लिए ऐसी दवाई दी जाती है, लेकिन इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, लैक्सेटिव कोलाइटिस, लूज मोशन, किडनी में स्टोन और हार्ट की मसल्स में कमजोरी हो सकती है। आमतौर पर बुखार और किसी भी तरह के एलर्जी से होने वाली जुकाम की स्थिति में ऐसी दवाइयां दी जाती है जो बैक्टीरिया, फंगस और ऐसे ही अन्य परजीवियों को नष्ट करने का काम करती है। लेकिन इन दवाइयों के सेवन से त्वचा में एलर्जी, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से बिना सलाह लिए इन दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए। जोड़ों का दर्द होने पर या किसी दुर्घटना में चोट लगने पर लोग दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे में जी मचलना, गैस की समस्या, पेट दर्द और लूज मोशन आदि। इसके अलावा ऐसी दवाइयां लेकर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह लिए पेन किलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस आप घर पर बैठकर मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर की पर्ची के बिना सेल्फ मेडिकेशन काफी है तो आप गलत हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के कई नुकसान हैं, जिसका असर लंबे समय में जाहिर हो सकता है। बुनियादी तौर पर जब दवाइयां आपके शरीर में प्रवेश करती है तो तेजी से अवशोषित हो जाती है और प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हो सकता है कभी आपको राहत मिल जाए या बाद में साइड इफेक्ट जाहिर हो। खरीदी गई हुई दवाएं बहुत नशीले और खतरनाक हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेगुलर मिलने वाला कॉफ सिरप खासकर इलाज में बहुत मशहूर है। ऐसे कॉफ सिरप्स इस्तेमाल करने पर मरीज नींद

से भरा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग राहत के लिए ऐसे कॉफ सिरप ले लेते हैं। हमने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां कॉफ सिरप लेकर लोग नींद में चले जाते हैं, और ये खासकर ड्राइवर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वर्तमान में ये सिरप डॉक्टर की सलाह पर बेचा जा रहा है। इसके विपरीत कई एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की पर्ची के साथ बेची जाती है। एंटीबायोटिक्स की खरीदारी डॉक्टर के सुझाव पर करनी चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसकी बिक्री को अपराध समझना चाहिए। कभी कभी लोग डॉक्टर के मशवरा के बिना पेन किलर को खरीद लेते हैं। शरीर में पहुंचने पर पेन किलर भविष्य में दर्द का कारण बन सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की खरीदना छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से सेल्फ मेडिकेशन के खतरे से लोगों को अवगत कराया जा सकता है। सबसे ज्यादा अहम है दुकानदार को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा की बिक्री रोकने के लिए शिक्षित किया जाए। पिछले सालों में लोगों के खानपान और हेल्थ केयर संबंधी आदतों में कई सारे बदलाव आए हैं। कोविड से बचाव में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों ने बिना डॉक्टर से बिना सलाह मशवरा किए इंटरनेट पर पढ़कर कई तरह के दवाइयों और मल्टीविटामिन का खुद से ही सेवन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें किडनी और लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत ही गलत आदत है जो इन दो अंगों को ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। तो जान ले कौन सी दवाइयों को ज्यादा सेवन से किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि लोग बीमारी के साथ साथ खुद से दवा लेना साइड इफेक्ट भी झेल रहे होते हैं। इन्हें बाद में गलती का एहसास होता है, पर तब तक बॉडी पर इसका असर पड़ चुका होता है। खुद से दवा लेने के खास पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। शर्म या लिहाज के चलते महिला खुद से ही दवा ले लेती है, या परिवार को प्राथमिकता देने के चक्कर में वो अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं देती और खुद से इलाज शुरू कर देती है। ऐसी गलती न करें। कुछ लोग खुद से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर आपको बता दें कि इससे भी आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सप्लीमेंट्स का असर हर शरीर पर अलग ढंग से होता है। अगर सही तरीके की बात की जाए, सप्लीमेंट्स लेने से पहले भी आपको कई टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे कई लोग प्रोटीन, विटामिन आदि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन आपको बीमार कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद से दवा ले लेना। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उन्हें इसके नेगेटिव परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के असर से उल्टी, चक्कर आना, सिर में दर्द से लेकर मोटापा, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए आप अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। उम्र और बीमारी के मुताबिक तय होता है दवा की डोज। डोज ऑफ मेडिसिन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज एंड डिजीज। आपने दवाओं पर नाम के साथ उसकी एमजी भी लिखी देखी होगी, जैसे 75 एमजी या 500 एमजी। ये दवा की डोज होती है। उम्र और बीमारी के मुताबिक डोज डॉक्टर तय करता है। अगर आपने छोटे बच्चे को हाई डोज दे दी तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। वही अगर हल्के बुखार में आपने हाई डोज ले ली तो आपको घबराहट ये बेचैनी होगी। इसीलिए भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना खतरनाक है। वायरल होने पर या मलेरिया जैसे रोगों में भी लोग खुद से दवा ले लेते हैं, जिनका प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं होता है। कई बार तो इन रोगों से बचने के लिए लोग पहले से ही दवा खाना शुरू कर देते हैं, पर इन दवाओं को खाने से आपको रोग नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिना प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंट्स खाने के नुकसान बहुत है दोस्तों। साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। टीवी पर एड देखकर या इंटरनेट पर पढ़कर लोग सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोचते हैं, पर आपको नेचुरल फूड से ही पोषक तत्वों की कमी पूरी करनी चाहिए। खुद से सप्लीमेंट्स लेना हानिकारक हो सकता है। उम्र बढ़ने पर पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की मदद ली जाती है, पर उसे डॉक्टर बताते हैं अगर आप खुद से ही इन्हें खाएंगे तो इनका बुरा असर आपकी हेल्थ और स्किन पर हो सकता है। कई बार हार्मोन का स्तर घटा या बढ़ जाता है, जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं।
खुद से दवा लेने पर लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सी दवाइयां लीवर को इफेक्ट करती है, इसीलिए डॉक्टर

0: दवा के साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, पर खुद से दवा लेने पर आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अगर आप दर्द के लिए पेन किलर खा रहे हैं तो लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपके बाल झड़ सकते हैं, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, सुस्ती आना, मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डिप्रेशन, मसल टाइटनेस एंड सोरनेस, ये सब पेन किलर से होते हैं। बुखार, खांसी या वायरल की दवा अगर आप खुद से लेते हो तो आपके पेट में गड़बड़, एसिडिटी, किडनी से जुड़े शिकायत आदि हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक केमिस्ट की बताई हुई दवा भी न ले, कई बीमारियों में जांच की जरूरत होती है। दवा के साइड इफेक्ट तुरंत न दिखे पर आपको बाद में खुद से दवा लेने के दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर की मदद ले। With this very useful information about the harmful effects of self-diagnosing and self-medication, this is Chetan wrapping up for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पिटारा। पिटारा के अंतर्गत आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज़।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई, तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है। और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तो उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ।
0: जी।
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत
0: जो थी।
1: बहुत, बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचमदा का ही गीत सुन लिया जाए जिसमें आपने अपनी आवाज दी।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो वो बच्चा अपने
1: पंचमला ने सिखाया, पता है उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो, शर्मिला जी कैसे बोलती हैं, मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोला यही चाहिए मुझे। हाँ, आगे क्या है डैडी? हाँ, मैं तो भूल ही गया, मुझे वो चाहिए। बहुत यादें आपने ताजा की आज।
0: जी, जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना, तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है, फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
0: जी,
1: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदा के नीचे।
0: अच्छा,
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी।
0: अच्छा
1: जी, मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहाँ से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी
1: कोई भी गाना अच्छा, पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
0: अरे
1: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा, एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे, दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे।
0: अच्छा।
1: और फिर ओवर टाइम, तो वहीं सोए थे वो, उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो लास्ट अंतरा लिखो और देखो लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: जी,
1: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
0: वो गाएगी,
1: हाँ बोले गाएगी गाएगी पंचम, वो गाएगी गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी
0: जी,
1: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आवाज़ ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसकी आवाज़ जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल सूट
0: करती है,
1: इस करके ये गाना मुझे मिला।
0: तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, बताइए तेरा मुझसे है पहले का नाता,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप ही का गाया वो सुन
1: जी।

0: मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी, जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: है। बात है,
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं लोगों ने, किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको जन्म।

0: वाला है, उसी को बुलाना तो आ जा। हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदाकिनी, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही।
1: जी जी,
0: देखिए मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये रा रा रा रा, और सॉफ्ट उसी को बुलाना तो आ जा आ जा।
1: क्या बात है, क्या तो बात है,
0: ये मैंने
1: ये आधार का जी, ये पंचम धाम में ही गुण,
0: ये उतार चढ़ाव डायनामिक समझे से कहते हैं, कहां कितना आपको जोर देना
1: है,
0: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह,
0: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
1: वाह,
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते।
1: जी जी जी, मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, उस छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: जो ये मेरा भाग्य ही
1: नसीब नहीं मिलता है, अच्छे अच्छों को नहीं मिला है, अभी भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है जिनको हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले सके सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: तो इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी, उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म, एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हा,
0: थी,
1: हा, हा,
0: है ना
1: जी,
0: बांग्लादेश वॉर के ऊपर वो था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: वाह,
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ, एक और मेरे दिल के करीब का गाना है।
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना?
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान है।
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी।
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी
0: कोल्हापुरी
1: ने जी।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहां प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स, मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट, मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा,
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी,
1: ने।
0: कि मैं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर
1: अरे
0: अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या?
1: हाँ
0: नहीं,
1: हाँ
0: मैंने कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूँ और मैं लता जी के साथ गा रही हूँ,
1: सबसे बड़ी बात
0: वही मेरे लिए काफी
1: जी
0: है।
1: जी
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है अब,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज, मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूँ ना, फेड इन फेड आउट पुश बैक पुश बैक, वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचम दास से सी। अब समझी,
1: वो खुद भी ऐसे ही गा देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात धर्म करम की फिल्म,
1: धर्म करम भी था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल, मुकेश अंकल के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ
1: जी गाया है। बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखे ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे। फिर मैं गाती थी एक तो नाम, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत

0: सोचते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हम माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
1: जी,
0: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत अलग, एक बहुत ही अलग गेम है,
1: विधा है।
0: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है। लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में, मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है, क्या गाती है, कर दो ना, कर दो ना, अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया। तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए, तरम पम। उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
1: जी
0: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
1: अरे
0: पर उनका बड़प्पन देखिए। हाँ, हाँ। ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ।
1: हाँ।
0: मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बापी दा की पहली फिल्म थी
1: जी,
0: नन्हा शिकारी।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे। तो वो बापीदा की पहली फिल्म थी और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो, नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता है, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी, लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे। हाँ, इवन हाँ, रिकॉर्डिंग्स में। हाँ, वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही हैं आप।
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए,
1: क्या बात है।
0: वहां मैंने ये एक और, मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
1: ये नम्रता भी,
0: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
1: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हूँ उसको अप्रिशिएट करते हुए।
0: और वही तो, बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरम पम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
1: अरे
0: राज, बच्चा तरम पम बोलेगा और मैं बोलूं, उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो क्या, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरम पम तरम पम, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
1: क्या
0: नहीं तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस,
1: बिल्कुल
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल इसको स्वीकार कर लेना,
0: ये ईमानदारी
1: जी
0: है ना
1: जी,
0: ये सब मैंने सीखा मंदा के नीचे
1: जी।
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
1: जी,
0: क्यों मैं समझती हूँ हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का
0: वो जो अंतरा है कि ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे

0: लिख दिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, ये हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये गाना
1: बजाइए। ये गाना हम बजाएंगे और हमारे श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी,
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर की मां
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी। मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब, वो कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूं, इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम किया
0: जी,
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है, और मैं ताउम्र याद रहने वाली बात,
1: और ये आखिरी गीत इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी। कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी

0: किनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूं। देखिए, मैंने सबकी जो करियर्स की जो शुरुआत हुई है, काफी, जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, अब फिर एन चंद्रा
1: उनके
0: जी,
1: शुरुआती
0: है
1: दौर
0: ना,
1: में।
0: काजोल और रानी मुखर्जी। तो हाँ, मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस
1: इसमें से आप
0: यस
1: हमारे लिए
0: तो ये हमने सोचा
1: लकी
0: ही
1: हैं।
0: नहीं था
1: जी।
0: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा,
1: बिल्कुल।
0: है ना। आज देखिए, मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
1: बिल्कुल
0: गया,
1: बिल्कुल। और
0: इतनी।
1: पुष्पा जी जैसी गायिका, जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका हैं, उनके
0: हाँ,
1: साथ गाना
0: मैं
1: आपको मिला।
0: बिल्कुल, और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर। मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
1: वो वही थी
0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
1: जी, वो
0: थी,
1: पुष्पा जी की ही
0: है ना।
1: आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
1: जी, मेरा ही
0: कीजिएगा
1: सवाल
0: जरूर,
1: है।
0: तब मैं आपको
1: जी, मेरा
0: बताऊंगी
1: ही
0: कि
1: सवाल है।
0: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए।
0: बस वो गाना
1: जी।
0: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले, पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं।
0: हम कितने भाग्यशाली हैं, आप प्लीज आइएगा हमारे
1: जी
0: बैंक में, सिर्फ
1: जी
0: आइएगा,
1: जी
0: तो हम सोचे, हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा
1: जी
0: लिया। मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की
0: जी
1: दुनिया में
0: जी
1: हम कई बार, जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या
0: जी
1: मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं,
0: जी
1: तो ये गाना नंबर वन पर होता है।
0: देखिए,
1: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को
0: है
1: हर
0: ना।
1: उद्घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने, जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी, कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, वो
1: हाँ, वो
0: पहचान,
1: स्थान।
0: वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं,
1: बिल्कुल।
0: जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चलें तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी,
1: बहुत
0: बाप
1: बहुत
0: रे।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो चलिए
0: इतने
1: ये गीत हम सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है, है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

जी विविध भारती का मुंबई केंद्र है FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजना चाहते हैं। कुछ ही पलों में होगा मराठी में समाचार, जिसे हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम छाया गीत।

वो इश्क ही क्या जो परवान न चढ़े, वो घटा ही क्या जो आसमान न चढ़े, बीते सदियां बीते जमाना लेकिन वो हुस्न ही क्या जो किसी का अरमान न बने। तुम मुझे भूल भी जाओ मगर हम याद रखेंगे, छोड़ देंगे दुनिया अगर मेरा इश्क ही मेरी पहचान न बने।

तन्हाई की इस घड़ी में मेरा कोई नहीं है। याद आते हो तुम बेसबब आज मुझे इस तरह। भटकता फिर रहा हूँ इस अनजान शहर में, डेरा कोई नहीं है। पुकारता हूँ तेरे नाम को बस एक ही आसरा, तेरे सिवाय जमाने में मेरा कोई नहीं है।

आप सुन रहे हैं छाया की। यूं तो देखा नहीं है पहले कभी, पर लगता कोई गहरा नाता है। एक झलक में कोई कहां दिल को इतना भाता है। है कोई बात जरूर तेरी आंखों के चमक में, तेरी एक नजर से रोशन दिल मेरा हुआ जाता है। फेर के नजर यूं ना जाओ मुझसे दूर, इस बात से ही दिल मेरा घबराता बहुत है। तेरा मुझे

0: मिले थे तुमसे न जाने कब पहली बार, यकीन यही है कि हो गया था तब भी तुमसे प्यार। दिन तेरे बिन जो बीते वो क्या खाक दिन थे, अब तुम जो मिले हो तो आया दिल को भी करार। कहता ना था मैं तुमसे कि हम पहले भी मिले हैं, न जाने कितने जन्म में, न जाने कब और कितनी बार।
1: हम तुम
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आखिर मिल ही गए दिल हमारे, तेरी नजरों में ही चांद की रंगत को निहारें। क्या जिंदगानी थी और अब क्या होने लगी है, मेरी चाहत तेरी बाहों में अब खोने लगी है। मुझको तो पहले से मोहब्बत रही तुमसे, अब थोड़ी थोड़ी तुमको भी होने लगी है।

छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाजें लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की थी। फिल्म का नाम था पतिता। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: कार्यक्रम का अगला गीत विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में रजत अरोड़ा का लिखा हुआ, गायिका हैं सुनिधि चौहान और फिल्म का नाम द डर्टी पिक्चर।

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है गाइड। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
3: और
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: शकील बदायूनी का लिखा गीत सुनिए। फिल्म का नाम है 20 साल बाद। गीतकार, कृपया से दोबारा सुने, गायक स्वर हेमंत कुमार का है और संगीत भी हेमंत कुमार का ही है।
1: करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए।

0: एक विल एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे हे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: राजेश रोशन की संगीत निर्देशन में नासिर फराज का लिखा गीत सुनिए, स्वर केके का, और ये फिल्म है काइट्स।

और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पी सी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन-देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बाग चराजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। तराने नए पुराने का शेष भाग अब सुनिए। केके की आवाज है, फिल्म का नाम है कार्तिक कालिंग कार्तिक। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तेरे घर के सामने, जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। गायक स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत सचिन देव बर्मन का है।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्रीतम के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल की रचना, स्वर जावेद अली का और फिल्म का नाम आक्रोश।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में है। फिल्म का नाम है 16 साल। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: और अब आज का तराने नए पुराने।

0: ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए इस सभा के मुख्य कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, संध्या 7 विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा जो पेश करेंगी पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। संध्या 7:45 पर कार्यक्रम होगा इंद्रधनुष, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे जिज्ञासा। रात्रि 8 हवा महल में सुनिएगा सुनो कहानी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी, इसका भाग 2 प्रसारित होगा। वाचक स्वर शेफाली कपूर का, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। चित्रलोक का प्रसारण समय आज रात्रि 8:15 और आपके लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 9। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार और ये कार्यक्रम संगीतकार पार्श्व गायक हेमंत कुमार पर केंद्रित होगा। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10 आप सुनेंगे छाया गीत, आलेख और स्वर मंजिरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता है राघवेंद्र सिंह नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10:30 पर और मैटिनी शो रात्रि 11। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का 324वां भाग प्रसारित होगा। संगीत सरिता कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 और कल संध्या 6:45 पर सुनिएगा श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 12, कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। सुबह 7 आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी का प्रसारण समय कल सुबह 8:15 और कल दिन में 2, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर।

आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:30 पर, और ये कार्यक्रम पार्श्व गायक महेंद्र कपूर पर केंद्रित होगा। आलेख और स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे, और ये कार्यक्रम फिल्मकार यश चोपड़ा पर केंद्रित होगा। आलेख और स्वर यूनुस खान का रहेगा। कल सुबह 10 पिटारा में सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज। आप सुनेंगे गायिका पूर्णिमा यानी सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग दो। कल दिन में 11 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। ये कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा। बारह 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल, और 1 सुरीला सफर। कल दोपहर 2:30 पर सदाबहार नगमे, दोपहर 3 फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। नाट्य तरंग में कल दोपहर 3:30 पर मुक्ति एक चिड़िया की, ये विषय रहेगा, लेखक अजीत पुष्कल और निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। कल दोपहर बाद 4 पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम। संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की ये बातचीत आप सुनेंगे, इसका भाग दूसरा प्रसारित होगा। संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। छायागीत का पुनः प्रसारण कल संध्या 5 और 5:30 पर तराने नए पुराने। विशेष जयमाला कार्यक्रम कल संध्या 7 आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत, और इसमें चर्चा होगी महावीर चक्र हवलदार दयाराम की। आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। कल संध्या 7:45 पर इंद्रधनुष में साज और आवाज। हवा महल में कल रात्रि 8 नाटिका तुम बड़े वो हो जी, लेखन निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। कल रात्रि 10 छाया गीत का प्रसारण होगा। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। और अब सुनिए कार्यक्रम संध्या रंजन।

यह आवाज मन्ना डे और साथियों की थी। फिल्म का नाम था सीमा। गीतकार शैलेंद्र थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

अभी आपने सुना ये गीत, आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। फिल्म का नाम था अमर, गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत बनाया था नौशाद ने। और अब आज का संध्या रंजन कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: संगीत सरिता में आजकल जो श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है उसका शीर्षक है ख्याल और तराने की विशेषताएं। प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा दी गई जानकारी और उन्हीं के गायन के उदाहरणों पर यह श्रृंखला तैयार की गई है, लीजिए सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। अब मैं आपको उस्ताद आमिर खान साहब के द्वारा रचित राग दरबारी में तराना सुना रहा हूँ, जिसमें हज़रत अमीर खुसरो की रुबाई है। हज़रत अमीर खुसरो की जो रुबाई है वह ख़ास रुबाई इसमें प्रयुक्त की हुई है। उसकी मानी है, बलबम रसीद जानम तो बिया के जिंदा मानम पसजा के मन न मानम बचकार खाही आमद। उसका मतलब है कि मेरे लबों तक जान पहुंच चुकी है, तू जल्दी आ ताकि मैं जिंदा रह जाऊं, और मेरे मर जाने के बाद आया उससे क्या फ़ायदा है, इसलिए यार मन बिया बिया। तो मैं आपको गाकर सुनाऊं।

अब राग मधुवंती में मैं तराने का अपना कंपोजिशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें रुबाई है, उसका मतलब है कि अपने दिल की बात किसी को मत कहो, अपने जिगरी दोस्त को भी मत कहो, क्योंकि उसका भी कोई दोस्त होगा, इसलिए वो कह देगा। इसलिए अपने दिल की बात को राज रखो। राज दिल बा यार जानी, ता तवानी हम मगो, यार ना यारी भुवत, अज यार यार अंदेशकुन। लीजिए, सुनिए।

0: राग मधुवंती में तराना अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। इनके साथ हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर ने संगत की और तबले पर इनका साथ दिया ओमकार गुलवाड़ी ने। ख्याल और तराने की विशेषताएं। शास्त्रीय संगीत की इन शैलियों पर आधारित कल की 12वीं और अंतिम कड़ी में आप सुनेंगे ख्याल नुमा ठुमरी की कुछ रचनाएं। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विशेष जयमाला।

आपको शायद याद होगा, फिल्म परख में एक गीत था, ओ सजना बरखा बहार आई। दरअसल उससे पहले मैंने सलील चौधरी का एक बंगला गीत गाया था जो कि काफ़ी पसंद किया गया। बाद में अपनी उसी तर्ज पर उन्होंने शैलेंद्र से ये गीत लिखवाया। मैंने वैसे हिंदी के अलावा भी कई भारतीय भाषाओं के गीत गाए हैं। मराठी तो मेरी मातृभाषा है ही, लेकिन गुजराती, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं के गीत भी मैं गा चुकी हूँ। अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि मैं दूसरी भाषाओं के गीत कैसे गा लेती हूँ। जवाब बिल्कुल सीधा है, सभी भारतीय भाषाओं की आत्मा एक है, मानव भावनाएं भी एक हैं। इस बात को समझकर अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो भाषा का भेद कुछ भी नहीं रह जाता, और भारतीय भाषाएं सीखने का मुझे शौक भी है। हाँ, तो सलील चौधरी के बंगला गीत की बात कर रही थी मैं। लीजिए पहले उसी की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ और फिर सुनिएगा उसका हिंदी रूपांतर।

फिल्म गाइड में बर्मन दादा का गाया हुआ एक गीत अब मैं पेश करती हूँ। बर्मन दादा की गायकी सबसे अलग है, सबसे निराली। बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से गाते हैं वो, और लोक संगीत की छाया जो होती है उनके गाने में, उससे गीत की मिठास और बढ़ जाती है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया है जानी मानी पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने। यह कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने।
1: अगला रिकॉर्ड मन्ना डे ने गाया है और बर्मन साहब ने इसकी धुन राग अहिर भैरव के आधार पर बनाई है। बोल शैलेंद्र के हैं और फिल्म है मेरी सूरत तेरी आंखें। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुहे नींद ना आई।

मैंने कई बार देखा है कि कभी तो जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड किए हुए गीत भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं और कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी गीत से संतोष नहीं होता। कई साल पहले की बात है, मैं कोल्हापुर से लौट कर आई तो पता लगा कि नौशाद साहब ने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाया है। मैं उन्हें देखने गई तो वहीं उन्होंने बताया कि फिल्म अमर के लिए एक गीत कल ही रिकॉर्ड करना है, शकील साहब ने बोल भी लिखे हैं। नौशाद साहब ने उसी हालत में मुझे ट्यून भी सुनाई और दूसरे ही दिन वो गीत जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड भी कर दिया गया, लेकिन आज भी वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है।

जाने वाले से मुलाकात न होने पाई। और इधर फिल्म बंदिनी में मुकेश का कहना है कि ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। जाने वाले लौट के आते हैं या नहीं आते, ये बात तो बहस की है, और बहस की जरूरत ना आपको है ना मुझे। लीजिए गीत सुनिए, रचना शैलेंद्र की है और संगीतकार हैं बर्मन दादा।

आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया है जानी मानी पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

वो कहावत है ना कि दर्दीले गीत ज्यादा मीठे लगते हैं। कम से कम मैं तो इस कहावत की सच्चाई को बिल्कुल मानती हूँ। बहुत से दर्द भरे मीठे गीतों में से एक ये भी है जो फिल्म जहां आरा में तलत महमूद ने गाया था। राजेंद्र कृष्ण के शब्दों को मदन मोहन ने संगीत से सजाया है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है।

कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। फिल्म हम दोनों में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गज़ल के बोल और गाने का अंदाज़ दोनों ही अच्छे बन पड़े हैं।

वैसे कुछ वर्षों से फिल्मी कहानियों पर पश्चिमी प्रभाव की वजह से कहिए या संगीत में नयापन लाने की गरज से काफी फिल्मी गीतों में पश्चिमी रंग ढंग दिखाई देने लगा है। इसी तरह का एक गीत मैं आपको फिल्म मेरे सनम का सुनवाती हूँ, जो कि मेरी बहन आशा भोसले ने ओपी नैयर के निर्देशन में गाया है।

0: अच्छा, तो मेरे फौजी भाइयों, मेरे प्रस्तुत किए हुए गीत आपको पसंद आए होंगे। इस आशा के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद।
1: ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया फिल्म संसार की सुप्रसिद्ध गायिका स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से निकालकर आपके लिए प्रस्तुत की। अब आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ।

0: दर्शन धूप।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप, धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
0: देवदर्शन धूप।
3: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है, कब्बन मिर्जा साहब। बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती,

0: जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस साल की थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है, सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला जिसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि। साल 2026 से नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए गए हैं और इसके तहत कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक और डिजिटल बनाया गया है। इसके अलावा 4-tier सोर्स सेग्रीगेशन यानी घरों से ही कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर इकट्ठा करने पर खास जोर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का आगाज 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, महात्मा गांधी की जयंती के दिन। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है भारत को स्वस्थ और स्वच्छ बनाना और इसके लिए जागरूकता फैलाना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षा दी जाती है और उन्हें अपने घरों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंतर्गत शौचालय निर्माण, स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से सार्वजनिक स्वच्छता को सुनिश्चित करने के साथ साथ जल, वायु और भूमि की रक्षा भी की जाती है और इस तरह से पर्यावरण को सुधारने में ये एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों की सजगता और सामाजिक सामर्थ्य को बढ़ावा दिया है और भारत को एक स्वच्छ देश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं जिससे खुले में शौच में कमी आई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में एक बड़ी प्रगति हुई है। स्वच्छता ही सेवा साल 2025 का ये नारा है जिसका केंद्रीय भाव है स्वच्छता उत्सव। 2024 तक भारत को एक सतत समावेशी और विकसित देश बनाना है। 2492 लाख टन पुराने कचरे में से 1437 टन यानी 58% कचरे का उपचार किया जा चुका है जिससे बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने में मदद मिल रही है। 2025 से एक अभियान चल रहा है, एक दिन एक घंटा एक साथ, जिसके तहत सभी को एक दिन एक साथ एक घंटे स्वच्छता अभियान चलाना है। शहरों और गांवों में लोग बड़ी संख्या में श्रमदान कर रहे हैं और कूड़ा जमा कर रहे हैं जिससे गांव और शहर स्वच्छ हो रहे हैं।
1: स्वच्छ भारत मिशन की यह यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओस, मीडिया के साथी सभी की सराहना करता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।
0: क्या आपने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया है और क्या आप अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले को साफ बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं? एल्जाइमर्स का नाम सुनते ही आमतौर पर किसी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति का ख्याल आता है जिसकी याददाश्त धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन क्या ये बीमारी सिर्फ बुढ़ापे में होती है या इसकी शुरुआत कई साल पहले ही हो जाती है? दुनिया भर के रिसर्चर्स इस बारे में खोजबीन कर रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक एल्जाइमर के लक्षण दिखाई देने से 10-20 साल पहले ही मरीज के दिमाग में बदलाव शुरू हो जाते हैं, इसलिए इलाज के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कम उम्र और बीच की उम्र में दिमाग की सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए। सबसे पहले डिमेंशिया और एल्जाइमर्स का फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिमेंशिया में व्यक्ति की याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ने लगता है। एल्जाइमर्स डिमेंशिया का ही सबसे आम प्रकार है। दुनिया भर में डिमेंशिया के ज्यादातर मामले एल्जाइमर्स की वजह से होते हैं। नई भाषा सीखना, नियमित व्यायाम करना, खास तरह का खान पान अपनाना या शरीर में विटामिन डी का सही स्तर बनाए रखना, क्या इन चीजों का आगे चलकर हमारी याददाश्त पर असर पड़ता है? बहुत सारी रिसर्च ऐसी चल रही हैं जिनमें इसका जवाब खोजा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पक्की धारणा नहीं बनाई जा सकी है।

पर इतना जरूर पता चला है कि दिमाग की सेहत का ख्याल रखने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जवानी के दिनों से ही इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि दवाइयों के साथ साथ व्यायाम, खान पान, पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली से जुड़ी दूसरी बातों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शब्द इस बारे में बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव रिजर्व। आम भाषा में कहें तो इसका मतलब है नुकसान होने के बाद भी दिमाग की काम करते रहने की क्षमता। कुछ लोगों के दिमाग में अल्जाइमर से जुड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनकी याददाश्त कम होने के लक्षण बहुत देर से सामने आते हैं। रिसर्चर्स ये मानते हैं कि लगातार सीखने, पढ़ने, नए हुनर सीखने और लोगों से जुड़े रहने से दिमाग की कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क मजबूत हो सकता है। इससे दिमाग के किसी एक हिस्से में नुकसान होने पर दूसरे तरीके से वो अपना कामकाज जारी रख सकता है। शोध में ये पता चला है कि व्यायाम का दिमाग की सेहत से गहरा संबंध हो सकता है। हाल के अध्ययनों में GPLD1 नाम के एक प्रोटीन पर ध्यान दिया गया है। जानवरों पर हुए शोध में ये पाया गया है कि व्यायाम के बाद बनने वाला ये प्रोटीन ब्लड ब्रेन बैरियर को ठीक से काम करने में मदद कर सकता है। ये बैरियर दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचाता है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इससे याददाश्त को बनाए रखने और बढ़ती उम्र के साथ दिमाग में होने वाले कुछ बदलावों को कम करने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ता ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यायाम, खान पान और पोषण का दिमाग की सेहत के साथ क्या संबंध है। कुछ अध्ययनों में ये पाया गया है कि माइंड डाइट लेने वाले लोगों में अल्जाइमर्स का खतरा कम हो सकता है। हालांकि इस बारे में अभी शोध किया जा रहा है। माइंड डाइट में मेडिटेरेनियन और DASH डाइट को मिलाकर एक भोजन तैयार किया जाता है जिसमें हरी पत्तियां, बेरीज, सूखे मेवे, मछली और ओलिव ऑयल शामिल है। हाल के वर्षों में विटामिन डी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 2026 यानी इसी साल एक लंबा अध्ययन हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि मिड एज में जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी का लेवल ज्यादा था उनकी बाद में अल्जाइमर से जुड़े टाउ प्रोटीन की मात्रा कम मिली। यह साफ किया है कि विटामिन डी और टाउ प्रोटीन के बीच एक संबंध का पता चला है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि विटामिन डी के कारण ही टाउ प्रोटीन कम हुआ है। यानी अभी सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते कि विटामिन डी का अल्जाइमर से कोई सीधा ताल्लुक है। पर आमतौर पर यह भी होता है कि लोगों को अल्जाइमर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और अगर कोई कभी कुछ भूल जाता है, थोड़ा सा भुलक्कड़ होता है, तो लोग इसे अल्जाइमर से जोड़ने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। इसकी सही जानकारी तो डॉक्टर जांच के बाद ही दे सकते हैं। यानी अगर कोई किसी का नाम भूल रहा है, ये भूल रहा है कि चाबी कहाँ रखी है, तारीखें याद करने में उसे दिक्कत आ रही है या कोई खास शब्द याद नहीं आ रहा है, तो ये आम बात हो सकती है। इसे अल्जाइमर से नहीं जोड़ा जा सकता। तो कुल मिलाकर अल्जाइमर्स के बारे में अभी गहरी रिसर्च चल रही है और इस बारे में बहुत सारे तथ्य वक्त के साथ सामने आ सकते हैं। और अब एशियन गेम्स की बात। भारत ने एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। जब हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक ये खबर आई है कि जापान के नागोया में शुक्रवार को सुरुचि और कमलजीत की जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग के मिक्स्ड इवेंट में 484.6 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। भारतीय जोड़ी साउथ कोरिया से 6.6 मीटर आगे रही। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम फाइनल में सुरुचि और कमलजीत की भारतीय जोड़ी सिल्वर जीतने वाली साउथ कोरिया से 6.6 अंक आगे रही। इंडिया ने 484.6 अंक हासिल किए, साउथ कोरिया को 478 अंक मिले। शूटिंग में इस एशियन गेम्स का यह पहला गोल्ड मेडल है। भारतीय निशानेबाज अब तक 10 मेडल जला चुके हैं जिसमें 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स का पहला गोल्ड मेडल जीता है। इस गोल्ड मेडल के सहारे भारत मेडल टैली में फिलहाल 12वें स्थान पर है। 2 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज सहित भारत के कुल 19 मेडल हैं। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने कांस्य पदक हासिल किया है, जबकि राइजा डिल्लो और अनंतजीत सिंह व्यक्तिगत फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर 5वें स्थान पर रही हैं। एशियन गेम्स 2026 में भारत की पुरुष और महिला स्कीट शूटिंग टीमों ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। एशियन गेम्स 2026 में भारत की रोशो बीना देवी ने वुशू में लगातार दूसरा सिल्वर मेडल जीता है और इतिहास रच दिया है। वो एशियन गेम्स में वुशू के लगातार 3 पदक

जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। भारतीय वुशु स्टार रोशोबीना देवी ने महिलाओं की सैंडा 60 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में उन्हें चीन की जांग शियाऊ के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। रोशोबीना देवी ने फाइनल के दोनों राउंड 0-5 के स्कोर से गवाए। चीन की जांग शियाऊ ने मुकाबला 2-0 से अपने नाम पर कर लिया और गोल्ड मेडल जीता। रोशोबीना इससे पहले 2020 के हांगझोऊ एशियन गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं और इससे पहले 2018 के एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो लगातार 3 एशियाई गेम्स में उन्होंने पदक जीती और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। उन्हें बहुत सारी बधाई। भारत के कुल 14 पदक हो चुके हैं और अब आगे बढ़ते हैं और खेलों की खबर से आगे निकलकर बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस की। 27 सितंबर को हर साल ये दिन मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत 1980 में हुई थी। इससे पहले सितंबर 1979 में स्पेन के टोरे मोलिनोस में आयोजित यूएन टूरिज्म जनरल असेंबली के तीसरे सत्र में इस दिन को शुरू करने का एक फैसला किया गया था। इसके बाद 27 सितंबर 1980 को पहली बार वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया था। इस दिन को चुनने की एक खास वजह ये है कि 27 सितंबर 1970 को यूएन टूरिज्म के स्टैच्यूज अपनाए गए थे। इस महत्वपूर्ण घटना को याद रखने के लिए वर्ल्ड टूरिज्म डे का दिन 27 सितंबर तय किया गया है। टूरिज्म का महत्व तो इतिहास से ही हम जानते हैं। पुराने जमाने में भी बहुत सारे यात्री निकले जिन्होंने देश और दुनिया को जानने की कोशिश की और उनके डॉक्यूमेंटेशन आज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। टूरिज्म के जरिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता तो बढ़ती ही है। हम अलग अलग समाज, संस्कृतियों और लोगों को जान पहचान भी पाते हैं। टूरिज्म के जरिए रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है और इसके अलावा सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संजोने और संभालने की जिम्मेदारी भी आती है। साल 2026 में जो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है वो है डिजिटल एजेंडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीडिजाइन टूरिज्म, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल एजेंडा के जरिए टूरिज्म को फिर से डिजाइन करना और उसे एक नया रूप देना।

टूरिज्म और विश्व धरोहर के बीच भी एक बड़ा गजब का संबंध है। ऐतिहासिक स्मारक, प्राकृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक विरासत दुनिया भर में टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। टूरिस्ट वहां जाते हैं तो इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और एक तरह की इकोनॉमी पैदा होती है और उस इकोनॉमी के जरिए विरासत के प्रति संरक्षण की जागरूकता भी पैदा होती है। टूरिज्म बहुत मायने रखता है, इससे हमारे दिमाग के बंद दरवाजे खुलते हैं, हम खुद को और दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, हम अपनी रूटीन जिंदगी से बाहर निकलते हैं तो एक तरह से हम तरोताज़ा भी हो पाते हैं और इसके अलावा हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, जिम्मेदार इंसान भी बनते हैं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके दोस्त यूनुस खान का था। मुलाकात अगले शनिवार को होगी जिज्ञासा कार्यक्रम में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत, राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज की आवाज़ों में, नीलेश मिश्रा के बोल और संगीत, प्रीतम का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध।

फिल्म हीरो का गीत अभी आप सुन रहे थे। युगल स्वर पलक मुछल और अमाल मलिक के थे। गीत को कुमार ने लिखा और धुन बनाई अमाल मलिक ने ही। चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय है एक अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह आवाज अंकित तिवारी की फिल्म का नाम रॉय, गीत को अभिन्द्र कुमार उपाध्याय ने लिखा है और धुन अंकित तिवारी की ही है।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
4: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
3: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इंदीप बख्शी और सोनी बी की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड का गाना।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
4: मांगा जो उसने एक सितारा।
0: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक।

0: अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
4: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से

0: बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह।
1: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
2: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
0: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
5: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
6: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
3: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।

0: उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
1: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है लाल पत्थर, गीतकार देव कोहली, संगीत शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने फिल्म लाल पत्थर का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम आन मिलो सच।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन। एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
1: इंतजार कीजिए।
3: कार्यक्रम का अगला गीत साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ सुनिए। स्वर मोहम्मद रफी का और फिल्म का नाम गजल।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है सफर, स्वर किशोर कुमार का, गीत रचना इंदिवर की है और धुन कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था सफर। आइए सुनते हैं फिल्म महाराजा का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का फिल्म महाराजा के लिए।
1: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
1: इंतजार कीजिए।

0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दोस्त, गीत आनंद बख्शी का था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
4: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाया।
2: इंतजार कीजिए।
0: और अब आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले।

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जन नाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44। फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया,

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक सॉरी कार्यक्रम छाया गीत के प्रायोजक हैं विको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सभी सुनने वालों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्यार सच्चा है गर तो महकेगा चंदन की तरह, वरना सारी रात तुम्हारी आंखों में गुजर जाएगी। वो लम्हात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ कह न सके हम, तकदीर के हाथों लुटते रहे।

लोगों ने बहुत समझाया हमको, ये इश्क नहीं आसा, तकदीर में जो होगा वो मिलेगा ही तुझे एक दिन, मगर हम जान की बाजी लगा बैठे, तमन्ना उसे पाने की, उसे अपना बनाने की, जो कसम खा बैठे।

ख्यालों में उसी के हम करवटें बदलते रहे, वो नहीं थे पास मगर उन्हीं को याद करते रहे। चाहत भरे दो दिलों की दास्तां चुपके चुपके असर करने लगी, रह रहकर धड़कनों में बस एक ही पुकार उठती।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। वो शाम आई, वो रात आई, तकदीर इतनी बेरहम भी न थी, ये हमने उस रोज़ जाना। आसमां पे चांद अपने पूरे शबाब पर था, वो मेरे सामने चांदनी बनकर इस तरह आई। उस रात की तन्हाई में दिल मचल उठा और मोहब्बत भरे तराने ओठों पे सज गए।

जब सामने आ ही गए वो, तकदीर मेरी हंसी पड़ी। क्या खूब दीवाने होते हैं, नजरों में मोहब्बत के फूल खिल उठते हैं, सांसें महक उठती हैं, फिजाओं में रंग बिखर गए और आपस में शिकायतें भी तो यही करने लगे।

अब क्या कहें, राज दिल दीवानों से छुपाया न गया। मोहब्बत की आग ही कुछ ऐसी होती है कि तकदीर भी पल में बदल जाती है। प्यार के आगे वो मुस्कुरा के झुक जाती है। प्यार परवान चढ़ता है जब दो दिलों की बातें आंखों ही आंखों में होने लग जाती हैं।

मौसम कितना भी सुहाना हो या हो रातें सुहानी, बस वो तुम्हारी यादें, वो प्यार भरी बातें, वो तुम्हारी जुल्फों का लहराना मुझे मेरी नींदों से जुदा कर जाता है। क्या कहूँ मैं, किससे कहूँ अपने दिल का हाल, उस पर से ये रात का आलम भी कुछ कम कहर नहीं ढा रहा।

छाए गीत में मोहब्बत भरे तराने आपके दिलों के बेहद करीब छोड़कर जाती हूँ, शायद ख्वाबों में मुलाकात हो जाए तो मंजरी वर्मा का नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।